परमात्मा साढ़े मन की साढ़े दिमाग की साढ़ी सोच की हर गल पढ़ सकता है। तो जदों असीं दुचित्ती च फसे हुंदे आ ते उदों सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा का नाम अपनी जुबान तो ते अपने मन तो बोल के ही सानू शांति मिल सकती है।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: इको परम पिता परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है जो साडे सारे कारज सवारन विच ते पूरे करन दे विच सहाई है।

0: इस संसार दे विच सिर्फ एक परमात्मा दा नाम ही सच्चा है, बाकी सब मोह माया है। इस संसार दे इस भवसागर चो बाहर निकलन दे लई सिर्फ ते सिर्फ उस ईश्वर दा नाम ही काम आंदा है।
1: ॐ शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।

बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जिनमें अपने प्यारे लोग साथ होते हैं।

लेकिन उससे भी खूबसूरत वो लम्हे होते हैं जब दूर रहकर भी वो हमें याद आते हैं और हमें याद करते हैं और हमें इस बात का एहसास करवाते हैं। तिलो जी, काफी दूर रहने तो बाद आखिरकार आज गलबात हो ही रही है अपनी। वैसे मैंने लगता कि ये काफी लंबी मुलाकात देर तो बातें नहीं हुई, इस बारी जल्दी हो गई है। लेकिन हाँ जी, पिछली मुलाकात में थोड़ा ज्यादा इंतजार सी। बस इदी होंगे, कभी कभी कुछ मुलाकात जल्दी हो जाती ने, कई मुलाकात के लिए सानू काफ़ी वेट करनी पैंदी है। लेकिन जदों प्यार होवे ना दिल तो, उदों उस इंतजार दे विच भी मज़ा भी आता है, तो उस प्यारे नू मिलन दी एक तांग भी रहती है। जिदा मैनू तांग रहती है कि मैं कदों आऊँगी FM रेनबो ते तुहाडे नाल गल्लां करन, मतलब मेरा साथ कदों FM रेनबो दे नाल बनेगा। और तुहानू भी मेरे ख्याल च हर रात अगली सवेर होने का इंतजार होंदा है कि तुसी कदों अपने प्यारे FM रेनबो नू सुनोगे। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत कर दिया तुहाडे सारयां दा ही अज दे इस प्यारे जे थर्सडे मॉर्निंग ते ट्यून किया हुआ तुसी सारे ने, तुहाडा फेवरेट ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो 102.7 ते। कुछ दोस्त सानू 103.6 दे जरिए सुन रहे ने, यानी कि AIR अमृतसर तो, और इसी फ्रीक्वेंसी दे जरिए सरहद पार तो प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यून करते ने FM रेनबो जलंधर नू। और जो दोस्त इस वेले सानू न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते सुन रहे ने, आ गई है ने चेहरे ते स्माइल। हाँ जी, तुहानू भी कभी मिस थोड़ी कर सकती हूँ, मैं हमेशा काउंट कर दी हाँ। और स्पेशल थैंक यू है जी तुहाडा कि तुसी सानू साड़ी ऐप दे जरिए दूर दूर बैठे सुन रहे हो, और तुहाडा सारे दा ही इस प्यारी जे खुशनुमा जी सवेर दे विच स्वागत कर दी हूँ। मैं तुहाडी दोस्त RJ पूजा टोहानी। टाइम हो गया है तुहाडे फेवरेट वाले मॉर्निंग शो दा, यानी कि जिसका तुहानू बेसब्री दे नाल इंतजार होंदा है, गुड मॉर्निंग जलंधर दा, जिस विच इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज होंदी है, और नाल दी नाल गल्लां बातां दा सिलसिला ते जारी रहिंदा ही है, और एंटरटेनमेंट गाणियां दा सिलसिला मैं बिल्कुल भी रुकण नहीं दिंदी। सो 8:30 बजे तक चलेगा गुड मॉर्निंग जलंधर, और बहुत कुछ है अज दे गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच। 8:30 बजे खबरां सुनोगे, 8:40 तो 9 बजे तक अड्डी टप्पा सैगमेंट दे विच तुहाडे वर्कआउट सैशन नू देखदे होए मैं पंजाबी बीट सॉन्ग्स प्ले करूंगी। 9 बजे मेरे तो FM न्यूज़ हेडलाइन सुनने तो बाद प्रोग्राम सुनांगे दिल अपना पंजाबी, जिस विच तुसी भी अपनी आवाज़ मैनू भेज सकते हो WhatsApp ते ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके उस दे जरिए। सो कुल मिला के 10 बजे तक अज दा मेरा तुहाडे नाल ये सफ़र चलेगा, जो शुरू ऑलरेडी हो चुका है 5:53 तो, और फिलहाल 7:07 और पूरे 32 सेकेंड हो गए ने। और अज दे दिन दी इस खामोशी नू तोड़न दे लई प्यारी जी आवाज़ विच बहुत ही सोलफुल जिहा ट्रैक तुहाडे लई प्ले करन जा रही हाँ। तो स्टे ट्यून ओनली ऑन FM रेनबो RJ पूजा टोहानी, यानी कि मेरे नालन गुड मॉर्निंग जलंधर।

लिए हर रिश्ते दे विच मेहनत एफर्ट्स दी कंसिस्टेंसी दी व्हाट यू से। चलो फिलहाल तो तुम मैनू सुन रहे हो, मैं ही दस रही हूँ तुहानू जो मैनू समझ आ रहा है या मैनू जो लगता है। एक चीज़ मैनू होर लगती है, वो ये है कि असी आप सारे ही एक गिफ्ट आ। यस यू आर अ गिफ्ट। इवन ऑन द डेज यू डू नॉट फील ब्राइट, जो असी थोड़ा जहा बुझे हुए महसूस करते हैं, होंगे ना कई दिन कि असी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड जहा फील ही नहीं करते, ब्राइट फील नहीं करते होंगे, थोड़ा डल मूमेंट आए होंगे ने लाइफ दे विच। लेकिन ये सोचो कि ऐदा दा टाइम तो हर किसी पर आता है, कई मूड चेंज कर देंगे ने, कई बार बहुत सारे फैक्टर बहुत सारे कारण होंगे ने जो असी लो फील करते हैं, डल मूमेंट्स आते हैं लाइफ च। लेकिन उदो सानू ये सोचने की लोड़ है, मैं तुहानू दस रही हाँ कि तुहाडी काइंडनेस, तुहाडी निम्रता है जिहड़ी, तुहाडी प्रेजेंस है ना जिहड़ी, होना किसी दे नाल जरूरी नहीं है कि हो कि आपां नाल कुछ करना है या असी किसी तरह ना उसकी मदद ही कर सकते, कई बार साड़ी प्रेजेंस ही उत्थे काफ़ी होंदी है। तुहाडा हासा, मुस्कुराना, प्यारी जी स्माइल, तुहाडी केयर, परवाह करनी, ये छोटिया छोटिया चीज़ा है ना जिहड़िया सानू एक गिफ्ट बनाउंदियां ने, एक अच्छा ह्यूमन बनाउंदियां ने, चंगा मनुख। और यही पिछे छड़ के जांदी है इदां दी एक लाइट जो अगले दी जिंदगी दे विच रोशनी भरदी है, जिथे ओ शख्स तुहानू देख भी नहीं पा रहा हुंदा, तुहाडी कीती हुई एक छोटी छोटी केयर उसनू महसूस हो रही हुंदी है। सो यही तो एक गिफ्ट है, साडा गिफ्ट, तुहाडा गिफ्ट। तो अगर गिफ्ट बनना चाहते तो यह सारिया चीज़ा अपने अंदर होनिया चाहिए है। और बस फिर देखो प्रेशियस तो तुसी है ही हो, लेकिन जिस दी भी लाइफ जाऊंगे उस दी लाइफ नू भी तुसी होर खुशनुमा कर दोगे, और फिर वो इंसान तुहाडे नाल रहना और तुहाडा साथ कदी भी खोना नहीं जाएगा। स्वार्थ जी पूजा तुहानी दे नाल टाइम हो गया है अगले सॉन्ग नू एंजॉय करन दा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन एफएम रेनबो एंड गुड मॉर्निंग जलंधर।

0: म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स और फिलहाल ट्यून की है जो तुसी तो हाड़ा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो 102.7 ते 103.6 ते और नाल दी नाल न्यूज ऑन AIR ऐप ते सुन रहे तुसी वर्ल्ड वाइड लाइव आरजी पूजा टोहानी यानी कि मैनू ते प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर और हुन टाइम हो गया है प्रोग्राम दे विच साडे आज दे खास मेहमान नू इनवाइट करन दा। हां जी, एक और खास मेहमान क्योंकि आज है 18 जून यानी कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जांदा है आज दे दिन नू दुनिया भर दे विच। और आज साडे नाल गलबात करन दे लई डॉक्टर पूनम कश्यप जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने वो आ चुके ने फोन लाइन ते ते सब तो पहला स्वागत कर दिया उन्हां दा। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। गुड मॉर्निंग जलंधर।
1: गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग।
0: ते इस वेले मैम तुसी आ चुके हो साडे नाल बिल्कुल लाइव FM रेनबो ते और जिवें सब तो पहला तो चलो तुहाडा स्वागत करदे हां तुसी अपने कीमती समय च जिवें दस्सिया सी तुसी सानू कि समां नहीं है फिर भी तुसी साडे नाल आए तुहाडा तहे दिलो थैंक यू करदी हां मैम। ते अज दा दिन है मैम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दे तौर ते मनाया जांदा है पूरी दुनिया दे विच, है ना। ते साडे लिसनर्स नू सब तो पहला यही दसो कि ये जिहड़ा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है ये की है।
1: अच्छा जी, जिहड़ा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है वो यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया सीगा ते ये हर साल 18 जून नू मनाया जांदा है
0: जी।
1: ये जिहड़ा दिन हैगा लोगों विच अवेयरनेस क्रिएट करने लिए मनाया जाता है ताकि वो अपनी जिहड़ी फूड चॉइसिस है जिहड़ा को खाना छांटदे है वो बहुत ही वधिया उन्हां लई हेल्दी भी होवे ते नाल नाल वो अपने एनवायरमेंट लई भी वधिया होवे ताकि अपना ये प्लैनेट हैगा अर्थ प्लैनेट हैगा ये बहुत ही ज्यादा वधिया रहे
0: जी।
1: ये अवेयरनेस क्रिएट करता है बेसिकली ये एक लिंक है ये दिन तां मनाया जाता है ताकि ये लिंक जिहड़ा हैगा अपने विच एग्रीकल्चर न्यूट्रीशन फूड सिक्योरिटी एनवायरमेंट इस चारा पंजे चीजां नू इकट्ठा करदा है बेसिकली ताही ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जांदा है हर साल 18 जून
0: जी। ते ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਏ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
0: ਅੱਜ
1: ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नाल वीवाटेक 2026 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो मध्य प्रदेश से उड़ीसा के 5 दिन दौरे पर होंगे। भारत के बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई तो लागू होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने दोवां देशों विचकार संघर्ष खत्म करने लिए 14 नुकाती अमन समझौते ते दस्तखत किए। आज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। ते भारत ने बीती रात औरतों के 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में नीदरलैंड 95 दौड़ा नाल हरा दिता। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात फ्रांस की राजधानी पैरिस पहुंचे। उन्हां दे पहुंचण ते भारतीय भाईचारे ने उन्हां दा निग्गा स्वागत कीता।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: पैरिस विच प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक 2026 सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। ओ भारत दी तकनीकी तरक्की अते नवीनता नूं दुनिया सामने रखणगे। इस तों पहला G7 सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कई आलमी नेतावां नाल मुलाकात कीती ते आलमी दक्खण दे मुद्दियां नूं प्रमुखता नाल उठाया। पैरिस विच प्रधानमंत्री भारतीय भाईचारे लई एक विशेष समागम नूं भी संबोधन करनगे। इस दौरे नाल भारत फ्रांस संबंधां नूं होर मजबूती मिलण दी उम्मीद है। G7 दे संपर्क सैशन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशां भारत ते आलमी दक्खण दीआं ताकतां नूं मिला के संपर्क ते व्यापार नूं वधाउण दी रूपरेखा दी तजवीज़ रखी। उन्हां कहा कि विकासशील देशां ते पछमी एशिया संकट दा दूर तक पैण वाला असर होएगा। शिखर सम्मेलन तो वखरे तौर ते प्रधानमंत्री ने अमरीका, बरतानिया, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कैनेडा, यूरोपी कौंसिल ते यूरोपी आयोग के नेतावां नाल मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप नाल तवल्ली बैठक विच ईरान दे नाल समझौते दौरान समुद्री नैविगेशन की स्वतंत्रता पक्की करन ते भी जोर दिता।
3: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लई एक सुरक्षित, समावेशी अते मनुख केंद्रित पहुंच की मांग की थी। इस गल ते जोर दिता कि AI दा असल माप मशीना दी शक्ति विच नहीं सगों ए है कि ए आम लोकां नूं किन्नी प्रभावशाली ढंग नाल मजबूत बनाउंदा है। AVN विच G7 शिखर सम्मेलन दौरान AI दे सुरक्षा तेज अते कुशल रोल आउट नूं यकीनी बनाउणा विषय ते सैशन नूं संबोधन करदे होए श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच मनुखी जीवन दे हर पहलू नूं बदलण दी समर्थ है। डिजिटल युग विच बच्चियां दी सुरक्षा नूं दी जरूरत नूं उजागर करदे होए प्रधानमंत्री ने सावधान कीता कि जदों कि AI सिखण अते रचनात्मकता नूं वधा सकदा है, ए नौजवान वरतोंकारां नूं गलत जानकारी

टीम सिर्फ 114 दौड़ा बना के आउट हो गई। भारत लई स्मृति मंदाना ने 74 अते शेफाली वर्मा ने 55 दौड़ा का अर्ध सैकड़ा बनाया। शीचराणी ने 4 जदोंकि शेफाली वर्मा ने 2 विकटा लिया। नंदिनी शर्मा ने भी 2 विकटा लिया। स्मृति मंदाना नू प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। आखिर च खास खबर एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के नाल वीवा टेक 2026 सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो मध्य प्रदेश अते उड़ीसा दे 5 दिन दौरे ते होंगे। भारत अते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता इस साल 15 जुलाई तो लागू होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने दोवां देशां विचकार संघर्ष खत्म करने लई 14 नुकाती अमन समझौते ते दस्तखत कीते। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।

वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम हो चुका है 8:41 तो पूरे 14 सेकेंड और टाइम हो गया है तुहाडे फेवरेट प्रोग्राम का जिसका तुहानू बेसब्री दे नाल रहिंदा है जी इंतजार, यानी कि तुहाडी अड्डी नू थोड़ा जिहा कष्ट देण दे लई मैं चलाऊंगी बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग, यानी कि तुहाडा फेवरेट वाला सैगमेंट अड्डी टप्पा। इंजॉय करोगे तुसी मेरे नाल, यानी कि तुहाडी अपनी आरजी दोस्त पूजा टोहानी दे नाल। आ रहा है फर्स्ट ट्रैक तुहाडे रेडियो सेट ते।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स तुहाड़ी रहै जी एफएम रेनबो और तुहाड़ी एंटरटेनमेंट दे लई बहुत सारे तरह दे असी प्रोग्राम लेके आने बहुत तरह दी इनफॉरमेशन साडे कोल कोशिश हुंदी है कि असी लेके आईए ताकि तुहाड़ा एंटरटेनमेंट भी होवे और इनफॉरमेशन भी तुहानू असी फुलान दे पाईए। सो फिलहाल इनफॉरमेशन दा जिहड़ा डोज है वो मैं कवर कर चुकी हाँ, तो एंटरटेनमेंट दी डोज वल चलदे हां। वेलकम बैक वंस अगेन। ते आज है जी 18 जून थर्सडे, वीरवार दा दिन है और सवेर तो बनी हुई है मैं तुहाड़े नाल, तुहाड़ी दोस्त आरजे पूजा टोहानी और मेरे नाल कुछ होर मेरे निके निके दोस्त है ने स्टूडियो दे विच जिहड़े आ रहे ने विच विच प्रोग्राम दा शायद इंजॉय कर रहे ने और विच विच शायद मेरा साथ दे रहे ने, पर उन्हां दे साथ तो कई बार मैं बहुत ही खुश हुंदी नहीं हुंदी क्योंकि मैनू हुंदा कि मेरा काम है मैं बिना डिस्टर्बेंस दे ही करा। चलो कोई गल नहीं, मेरा तो चलता ही रहता है, तुहाड़ा मैनू पता नहीं है कि किदा का टैक्नोलॉजी के नाल ते कुदरत दे नाल किन्ना प्यार है। मैं तो अपन कहानियां तुहानूं सुना दिंदी हुंदी आ। सो जी टाइम हो चुका है 9:04 पूरे 30 सैकेंड और टाइम मैनू यह दस रहा है कि टाइम हो गया है दिल अपना पंजाबी शुरू करन दा, जिस विच तुसी भी मेरे ना अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे और किसी सुनेहे नाल भरे हुए मैसेजेस व्हाट्सएप ते ऑडियो मैसेज शेयर कर सकते हो साढ़े ऑफिशियल नंबर ते। नंबर जल्दी दे नाल नोट कर लो, अगर नोट हैगा तो ठीक है, चंगी गल है। मैनू पता ऑलरेडी तुसी मैनू मैसेजेस भेजने शुरू कर दिते ने, लेकिन ठीक है कोई गल नहीं, वारी वारी आप सारिया दे मैसेजेस सुनांगे। तो पूजा टोहानी यानी कि मैं तुहाड़े नाल और मैनू भेजने ने तुसी अपने वॉइस मैसेज 9855 10 10 27 ते, यानी कि 9855 10 10 27 ते।

0: लाल बत्ती पर हो खड़े, अपना एसी भी बंद कर लीजिए और गाड़ी का इंजन भी बंद कर लीजिए, गर्मी टेम्परेचर बहुत है, उस वजह से जितना भी थोड़ा हम अपने इंजन को बंद करेंगे तो उसकी गर्मी हीट कम निकलती है और थोड़ी गाड़ी भी सेफ रहती है और पोल्यूशन भी कम रहेगा।
1: बिल्कुल जी, सही क्या तो सही।
0: बस यही आज बोलना था अपने एफएम रेनबो के माध्यम से सभी दर्शकों को, बहनों भाइयों को प्यार भरी नमस्कार
1: जी। शुक्रिया, तुसी बहुत मैसेज तो सियाणा तो सही दिता है कि जो भी असी खड़े होंगे सिग्नल से, तो असी अगर अपना इंजन बंद कर दिए है ना, तो साढ़े ही पेट्रोल की सेविंग भी होएगी है ना, एनर्जी सेव करने ही साढ़े हाथ में ही है, तो पोल्यूशन भी घटेगा अगर सारिया गड्डियां इदा के रूल्स में फॉलो करन। और थोड़ा जहा असी एक्स्ट्रा टाइम लैके घरों अगर निकलीए तो फिर मैंने लगता कि रोड पर जी रोड रेज होंगी है ना वो घट जाएगी, कि एवं दौड़ भजाई लगी हुई है, हॉर्न बजाई जाते हैं, मतलब पता ही नहीं हॉर्न का मतलब, लो हॉर्न असी करते हैं कि हॉर्न प्लीज़, लेकिन हॉर्न किसी कारण तो बजाया जाता होंगे है, ट्रैफिक रूल्स से ट्रैफिक नियमों का सानू पता ही नहीं है, पता होना चाहिए सड़क पर निकलने तो पहला गड्डी लैके, मैंने लगता कि एक बार पढ़ लेने चाहिए ने, दिमाग च बिठा लेने चाहिए ने रोड रूल्स एंड ट्रैफिक रूल्स। चलो फिलहाल टाइम हो गया है प्रोग्राम च अगले गाने नूं एंजॉय करन दा, गाना सुन के जल्दी दे नाल वापस आ। पूजा टोहानी यानी कि मैं बनी हुई हूँ तुहाडे नाल, दिल अपना पंजाबी।

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: वेलकम बैक वंस अगेन। लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी ने मैसेज भेजा है कि इसाना प्रोग्राम सुन रहे ने। और इन्होंने एक चुटकला लिखा है, चुटकला मैनू कुछ खास समझ है नहीं आया, नहीं तो मैं तुहानू सुना दिंदी इस वजह करके। कोई गल नहीं, चलते हैं जी अगले गल्लां वाल। प्रोग्राम दे विच फिलहाल तुसी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हो जी 9855101027 ते, यानी कि 9855101027 ते प्रोग्राम दे विच अपना वॉइस मैसेज भेज के। तो तुसी भी मैनू दस सकते हो कि इदां दा की कुछ खास है जो तुहानू अपने पंजाब दा पसंद है। अगर तुसी बाहर ट्रैवल कीता है, तुसी बाहर जाके रहे हो, किसी होर स्टेट दे विच काम कीता है या आउट ऑफ कंट्री भी गए हो, तो उत्थे जाके तुहानू अपने पंजाब दी कोई गल इदां दी केड़ी है जिहड़ी बहुत ज़्यादा याद आई होवे, दसनी तुसी मैनू जरूर है। तो फिलहाल प्रोग्राम च अगले वॉइस मैसेज दे वल चलदे आ।
2: हेलो सत श्री अकाल, मैं लियाकतवीर सिंह बोल रहा, तो मैं काफ़ी चिर बाद बाहरों वापस आया। मैं पहला ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा हों, तो बड़ा वधिया लग रहा कि मैं हुण रेडियो सुन रहा, तो मेरे अपने दोस्तों की आवाज़ मैनू सुनने मिल रही है।
1: अरे वाह,
2: आकाशवाणी के 90 साल रीसेंटली पूरे हुए, मैनू बड़ा माण होया जदों मैं सोशल मीडिया से या वख वख अदारियां दे विच ये देखिया के 90 साल जेडे ने वो मनाए गए।
1: जी जी जी,
2: बड़ा वधिया लगता है जदों मैं ऑनलाइन भी रेडियो सुनदा जां जदों इत्थे आना तां गड्डी विच भी रेडियो सुनदा, अपनियां पुरानियां यादां ताजियां हो जांदियां ने। ते ये भी बड़ा चंगा लगता है कि जिन्हां दी आवाज मैं सुन रहा हुंदा उन्हां दे नाल ही मैं बाद च मिलदा भी हां, जां फिर उन्हां दे नाल ही मैं बोलदा भी रहा
1: जी।

0: very soulful track. और मैंने तो ये बहुत पसंद है. उम्मीद कर दिया तो हानू ये गीत बहुत पसंद आया होगा. आई थिंक दिस इज अ जेम काइंड ऑफ सॉन्ग जिहड़ा लिखा जाता है फिर उसनू रूह तो गाया जाता है. एनीवे वेलकम बैक. जल्दी दे नाल सुनते हैं प्रोग्राम च अगला वॉइस मैसेज.
1: हेलो सत श्री अकाल, मैं लिया.
0: ये तो आप सुन लिया अजीज, तो अगला मैसेज सुनते हैं.
2: कोई ऐसा ना करो काम दिन के उजेरे में जो तुम्हें नींद ही ना आए रात के अंधेरे में, और कोई ऐसा ना करो काम रात के अंधेरे में जो मुंह छपाते फिरो दिन के उजेरे में. तड़कदे दिलां ते सुनदे कन्नां नूं निमाना जा श्रोता उदे चंद्र सारयां नूं नमस्कार आखदा है.
0: नमस्कार जी.
2: आज रेडियो रेनबो दी कमान संभालन दा जिम्मा साडी तीराणी पूजा टोहाणी नूं मिलिया है. जो साडी तीराणी हरफन मौला है, बंदे मातरम बोल के प्रोग्रामा दी शुरुआत कीती ते वंदना प्रोग्राम विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर नाल मन नूं रब नाल जोड़िया ते रख लाज मेरी गणपति अपनी शरण में लीजिए. भजन शब्द सुना के इन्हां दे नाल नाल प्रवचन भी दित्ते जेड़े कि सानू इस मात लोक ते आउण दा मंतव दसदे ने.
0: जी
2: अज गुरुवार है, गुरु दे वचना ते अमल करांगा, अज गुस्सा नहीं करांगा. इस वाजे नाल अपने अपने कम्मा कारां ते जाओ जी, खुशियां मानो जी. अज गल करांगा स्वामी विवेकानंद जी दी, जेड़े कि साडे नौजवानां वास्ते प्रेरणा स्रोत ने. अज दे नौजवानां नूं उहनां दी जीवनी पढ़ के ते उहनां दे दस्से रस्तिआं ते चलण दी बड़ी लोड़ है, क्योंकि अज दा नौजवान दिशाहीन हो गया है. डिग्रियां ते जरूर लै रिहा है पर विवेकहीन ते मर्यादाहीन हो गया है. ज्यादा विस्तार भी नहीं जावांगा क्योंकि असी सारे ही टेलीविजन अखबारां ते सोशल मीडिया ते नवे चन चढ़दे वेखदे सुनदे रहिंदे हां. स्वामी विवेकानंद चित्रवान बनन ते बड़ा जोर दिंदे सी. ओह आखदे सी गया होया पैसा वापस पाया जा सकदा है, गई होई सेहत भी वापस पाई जा सकदी है, गई होई सत्ता भी वापस पाई जा सकदी है, ते जे किते चरित्र चला गया ते बेड़ा ही गर्क समझो सब कुछ चला गया. पैसा की सोने दियां इट्टां दे के भी गया होया चरित्र वापस नहीं मिलदा है. ये जड़ियां महान शख्सियतां होईयां ने ना, उन्होंने अपना चरित्र मैला नहीं होन दिता. मैं एक जगह बोर्ड लगा वेख्या ते बोर्ड पढ़ के बड़ा चंगा लगा, उस पर लिखिया सी सड़क ते कीता व्यवहार भी आप जिदे चरित्र दी पहचान करवांदा है. मैं नौजवानां नूं अपील भी ते बेनती भी करांगा कि उम्र दे हर पड़ा ते हर चीज मिल जानी है, काले ना पवो, वड्डी पूंजी चरित्र ए कठी करो ते अमीर बनो. रब राखा रब राखा रब राखा
0: जी. बहुत बहुत शुक्रिया, वधिया तुसी नसीहत दित्ती है. और जल्दी दे नाल अगला वॉइस मैसेज भी सुन लैंदे आ.
3: हेलो दोस्तो, दिल अपना पंजाबी मैडम ढोणी जी, तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल, तुहाडी सारी टीम नू, मैं जी समलतानी जलंधर तो
0: जी.
3: हाँ जी रंजी, जरा कबूल करना दो लाइना.
0: जी जी जी.
3: तती तवी ने पुछया अग कोलो इना सेख गुरु कमे सहार गए सी, थोड़ा सहम के

0: हम ही है इतना विश्वास, इसी दिन पूजा ढुआणी जी, सत श्री अकाल
1: जी। बलविंदर सराज जी, सानू पूरा यकीन है कि तुसी एदे ही हमेशा रहोगे जवान ते हुंदे रहोगे साडे प्रोग्राम च शामिल। जिदा दी तुहाडी शायरी सी मैं भी उदा दी बोल दित्ती ना, विदाउट राइमिंग। पर नहीं, ये बड़ी क्यूट जी शायरी सी, थैंक यू सो मच। तारीफ के लिए शुक्रिया, तारीफ बहुत वधिया तुसी कीती है, मतलब पूरी अपनी 100% कोशिश कीती है, एफर्ट दे 100% मार्क्स एंड पर्सनल क्लैप्स तुहाडे लई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत अच्छा लगा तुहाडा ये ट्राई अटैम्प्ट जिहड़ा सीगा तुसी कीता शायरी दे लई। जल्दी दे नाल हुण प्रोग्राम दे विच गाना नहीं, एक छोटी जी ब्रेक जरूरी है तुहाडे लई, साडे लई, सारे दे लई ब्रेक जरूरी हुंदी है। सो एक छोटी जी ब्रेक तो बाद गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहेगा।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना।

0: ओके, हर किसी तो फिर पूजा टोहानी वाली वाइब थोड़े ना आ सकती है, क्योंकि फिलहाल मेरे को बहुत सारी मैसेजेस दोबारा आ गए ने, मतलब दोबारा नहीं होर आ गए ने, तो फिर मैं वो चलानी है इस करके एंटरटेनमेंट हो गया। हुण आपां सुणदे आ वॉइस मैसेज।
1: हेलो दिल अपना पंजाबी, दिल से दिल तक पूजा टोहानी मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सारे दोस्तां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार
0: जी।
1: मैडम जी तुसी सवेर दे गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे सीगे, तुसी साडे रिटायर आकाशवाणी दे मनजीत सिंह जी दे नाल गुरु दी शहादत दे उपर पूरा व्योरा समझाया सानू। उना ने दसिया कि गुरु अर्जन देव जी दी शहादत दे उना ने सबर रोशनी सानू ए सिखांदी है कि तेरा किया मीठा लागे।
0: जी
1: सारियां गल्ला गुरु जी दे प्रति सानू सच सेवा मानवता हर कठिनाई सहन दी प्रेरणा दिंदी है।
0: जी
1: ए गल्ला सारियां करदे होए मैडम मैडम जी तुसी साडी गल कराई डॉक्टर पूनम कश्यप जी दे नाल। अज हैगा विश्व गैस्ट्रोलॉजिक दिवस, जिदे उपर अपने जिदे उपर असी अपने खान पीन दा पूरा ध्यान रखना है। सीजनल फूड खाने है, लोकल फूड खाने है मैडम जी, ते नाल किसान किस तरह खेतां विच उपजांदा है सानू ए सारी जानकारी देंदे होए ऑडियो छोटी बनानी हुंदी है, इस करके थोड़ा ही बोलिया जांदा है। मैडम जी तुहाडा बोलन दा अंदाज बहुत वधिया है,
0: किस तरह
1: कि एक प्रोफेसर सानू क्लास दे विच लेक्चर दे रहा होवे, पूरा डिटेल दे विच बड़ा सोहना पूजा टोहानी मैडम जी तुसी समझांदे हो,
0: तुहाडा
1: दिल तो हैंड सॉफ्ट।
0: अरे थैंक यू,
1: अपनी किरण नरुला, ग्रीन पार्क, कपूरथला
0: जी। थैंक यू जी किरण जी, और जल्दी दिनाल चलते हैं आप अगले वॉइस मैसेज, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। हैं
2: जरा पड़ा पंजाबी मनजीत खडूर वालों नमस्कार
0: जी,
2: के गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने आज शहीदी दिहाड़ा है जी,
0: जी जी
2: आज पंजारे हैं।

जी दोस्तों, गोविंदा एंड उर्मिला मातोंडकर दी ये फिल्म जो कि जिदे विच डिंपल कपाड़िया एंड परेश रावल एंड जॉनी लिवर ने भी अपनी जड़ी अदाकारी की है। एंड जी नाब कुमार यानी कि राजू पहला मशहूर जड़े कि डायरेक्टर सन सूरज एंड सहायक रह चुके सन, इस करके फिल्म काफ़ी उम्मीदा मतलब इस फिल्म तो बहुत सारिया उम्मीदा सब ने लाइया हुई सन। पर वाकई जी उस समय की जिदा कि मैं पहले दसिया कि उस समय के दौर योजना जिन्या भी मूवी से ना वो सारिया ही बहुत सुपर डुपर हिट हुई, मतलब ही उन्होंने ब्लॉक ब्लॉक के नाल नाल अपने जड़ा एक दिल के जड़ा गहरी जगह बना ली सी वाकई जी। एंड फिल्म का संगीत जड़ा उत्तम सिंह ने दिता सी एंड आनंद बख्शी ने लिखी हुई ये गीत जेडे कि बहुत ही फेमस हुए सन। और उसी ही समय दी यानी कि 1999 दी एक होर फिल्म है संघर्ष, जिथे एक फिल्म गोविंदा ते उर्मिला मातोंडकर की होंदी है ते दूसरी तरफ एक फिल्म जड़ी उसी दौर दे विच बनती है संघर्ष, जिदे विच अक्षय कुमार एंड प्रीति जिंटा ने एक वक्री अदाकारी की है, जिते फिल्मों का नाम प्यार दी नाम दे नाल जिदा कि हम तुम पे मरते हैं टाइटल ट्रैक होंदा है ते उसी फिल्म दे नाँ ते ही एक गीत होंदा। इसी तरह संघर्ष फिल्म हैगी है पर इहदे विच संघर्ष दी स्टोरी जिहड़ी ना बिल्कुल ही दूसरिया फिल्मों नालों डिफरेंट है। एक डर और एक भय जिदे नाल पूरी दी पूरी फिल्म चलती है, मतलब स्टार्टिंग तो एंड तक एक इंट्रस्ट बनया होंदा है कि पता नहीं वो कौन होएगा कित्थे होएगा और ये जो भी कुछ इस फिल्म दे विच घटना वापरदियां ने घटनावां वापरदियां ने वो किद्दां हो रही ने। और इस फिल्म दे विच जिहड़ा म्यूजिक दिता गया सी ना जिदा जिदा फिल्म चलती है जिदा जिदा अक्षय एंड प्रीति अपने अपने डायलॉग बोलदे, मतलब जे घट बोलन दे नाल एक म्यूजिक और एक तुहाडा डर ही पूरी दी पूरी कहानी बयान करदा वो भी अपने आप दे विच बाकमाल है। और इसी फिल्म का एक प्यारा जिहा गीत प्रोग्राम गीत बहार दे विच

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन।

0: फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ए मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होवेगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: जी
1: अच्छा, गर्मी का
0: अही
1: भी आनंद मान रहे
0: कहवांगे
1: हो।
0: ना, नहीं असि कहवांगे ना, हाय सर्दी हाय सर्दी, सानू उदो भी चैन नहीं, जेड़ी चीज अही मान लो सानू ज्यादा लगती है।
1: वाकई वाकई, मतलब वो गल तो ही होगी ना, भी इस गल नाल भी सानू सबर नहीं, जदों ठंड पैगी फिर कहिंदे कि हाए जी बहुत ज्यादा ठंड पै गई है।
0: ये मालिक का शुक्रिया करना चाहिए, शुक्र गर्मी आई है।
1: वाकई
0: हाँ जी
1: कहिंदे ने कि सेहत वास्ते ये वाली गर्मी जरूरी हैगी, मतलब थोड़ा जिहा ध्यान रखना चाहिए इस गर्मी दे विच अपना, पर
0: हाँ जी
1: कहिंदे ने कि जिन्नियां भी रुत्तां ने जरूर माननियां चाहीदी ने।
0: हाँ जी देखो ये गर्मी सर्दी लगती नहीं, अपने काम वाल ख्याल रखे रखो ते नाले गाने सुनते रहो, फिर कभी गर्मी सर्दी लगनी।
1: आए आए है, क्या बात कही है कि FM मतलब तुसी रेनबो लगा के रखना
0: हाँ
1: है।
0: जी ये परमात्मा की देन है, शुक्रिया करो जी अपन नु।
1: बाकी जिंदगी सच्ची कहिंदे ने कि 84 लाख जूनां तो बाद ये सानू जून मिली है, ते
0: 84 लाख
1: किन्नी
0: है ना, इसी हिसाब ना 84 लाख, एक एक साल का एक पॉइंट लाया जे 84 लाख,
1: वाकई
0: मालिक कहता तेन भेजा केड़े काम तू के काम च फस गया है,
1: वाकई वाकई
0: ते 5 साल भी अही ला लियो, पता नहीं किन्ने सालां बाद सानू मनुख का जामा मिलिया जे।
1: वाकई
0: ते जे
1: जी
0: असि मालिक कहते इत्थे भी आन के तुसीं ठगिया करोगे झूठ मारोगे ओहदा फायदा की है,
1: बिल्कुल सही
0: ऐसा मैं
1: गल
0: पता
1: कही
0: किथे
1: है
0: बैठा जे,
1: जी।
0: मैं ठेला लैके पौने 10 बजे आया पिया मंडी,
1: अच्छा जी, मंडी
0: सब्जी मंडी पुरानी।
1: सब्जी मंडी चौके जी।
0: हाँ जी उत्थे मतलब 30 फड़ियां ला के रेहड़ियों ला के बैठे हुए है।
1: ओके, मतलब
0: हाँ
1: सारे
0: के
1: जाणियां नूं तुसीं फिर ये प्रोग्राम इंजॉय करवा रहे हो।
0: मैं सारे नूं नंबर देता जी, लिस्ट बना के देती आ, मैं कहा भाई आ नंबर ते गल करियो तुहाडी गल बहुत, कहिंदे असीं कोशिश करांगे।
1: क्या बात है क्या बात है, बड़े वधिया साढ़े तुसीं, मतलब कहिंदे ने कि
0: मैं कहा
1: फैन हो
0: जदों तुहाडे
1: कॉलर हो।
0: कॉल लागी ना ते मैनूं पार्टी दे दिओ बस,
1: पार्टी च
0: और
1: दे
0: कल
1: लो,
0: ते
1: उन्होंने
0: चालू होण
1: सब्जियां
0: लगे
1: देनियां
0: आ।
1: ने। मैं क्या पार्टी च उन्होंने फिर सब्जियां देनियां ने।
0: नहीं जी सब्जी है वो बेचदे आ, उत्थे कुलचे वाला भी आउंदे आ,
1: अच्छा जी
0: नाल एक पुरानी हैगी मतलब दुकान
1: जी जी
0: हलवाई दी,
1: जी
0: ओहदी बर्फी बहुत मशहूर है जी, जे तुसीं उत्थे जाओगे उधर खा के आयो तुसीं बर्फी।
1: ठीक है जी, जरूर जी, तुसी क्या थे सानू मिल गई, असी खा लिए, ते फिर तुसी इन्ने टाइम हो गया तुसी उत्ते बैठ के झोला फड़ के बैठे हो सब्जी मंडी च, ते सब्जियां
0: हाँ
1: कड़ियां कड़ियां खरीदियां ने तुसी।
0: सब्जी देखो जी, पर मैं बैंगन खरीदे आ, ते गोभी खीरे
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: प्याज आलू
1: घर वास्ते सारियां
0: हाँ
1: सब्जियां कट्ठियां कीतियां ने।
0: नाल पपीता भी ले लिया जी।
1: क्या बात है, ते अंब नहीं लए मौसमी, क्योंकि आ वाला समा तो जेड़ा हुण अंबां दा है ना।
0: हाँ अंब भी जरूर लेते हैं जी।
1: जी, क्या बात है सर, बहुत वधिया लगा तुसी गलबात कीती
0: हाँ
1: ते
0: जी
1: नाल दी नाल इन्ने
0: जेड़े मेरे
1: जाणिया नूं गल
0: जेड़े
1: करवा रहे
0: फड़ियां
1: हो।
0: लाउंदे ना और मैनूं कहंदे जी इहनां दा सूल की आ, मैं कहा सूल वधिया वधिया गल्लां करो ते और गाने भी वधिया लाओ, पर तुसी ना आया बदली हो ना, जे तुसी पप्पू बोल ते पप्पू बोलियो, हरीश ना बन के आयो,
1: जी सर बिल्कुल, बाकी
0: कहंदे
1: कहिंदे ने
0: बिल्कुल
1: कि
0: ठीक है।
1: हाँ जी सच दे नाल चलना चाहिए, ते नाल दी नाल FM रेनबो तुसी ट्यून करके रखना 102.7 MHz। सर जी हुण फिर तुहाडी फरमाइश ते गीत केड़ा सुना दिए।
0: अज तुसी अपनी मर्जी ना सुना दियो।
1: क्या बात है, अज तुसी खुशी इन्ने हो कि तुहानू लगदा है कि भई रणदीप अज तो अपनी मर्जी दा कोई भी गीत सुना दे। थैंक यू
0: मैं
1: सो
0: देखो ही
1: मच।
0: कोशिश की थी, भी सफर रखिया जी, चलो काल लग जाए ते गल हो जाए साड़ी।
1: क्या बात है सर, तुहाडी गल हो गई और बहुत वधिया गल हुई है, थैंक यू सो मच। इदां ही साडे FM रेनबो दे नाल और स्पैशली इस प्रोग्राम दे नाल जुड़े रहो, कॉल करदे रहो, ते प्यारियां प्यारियां गल्लां साडे नाल सांझियां करदे रहो। गीता जैलदार दी आवाज़ दे विच अगला गीत तुहाडी रेडियो सैट्स ते गल बनी पई है।

वीणा है जी, अब हम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति नाल विवाटेक 226 सम्मेलन का हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन दौरे पर होंगे। भारत और बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस साल 15 जुलाई तो लागू कर दिया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजसिकिया ने दोवां देशों विचकार संघर्ष खत्म करने लई 14 नुकाती अमन समझौते दे दस्तखत कर दिते ने। उधर पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी ते कर विभाग विच 14 नवे भर्ती हुए मुलाजमान नूं नियुक्ति पत्र सौंप दिते ने। औरतों लई राष्ट्रीय कमिशन दे चेयरपर्सन वल्लों पटियाला विखे राष्ट्रीय महिला कमिशन आपके द्वार तहत 45 तो ज़्यादा मामलों च औरतों लई जन सुनवाई की गई है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है।

वेलकम बैक 102.7 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम शुरू कर दिया जी होम स्वीट होम मतलब भरपूर जानकारी इनफॉर्मेशन दा पूरी दा पूरा खजाना जड़ा इस प्रोग्राम दे विच तुहाड़े तक पहुँचाया जाता है। और ये प्रोग्राम हर रोज़ 12 तो 1 बजे चलता है, मतलब दोपहर का ये वेला जो घर परिवार की गल और घर परिवार के कमां तो थोड़ा जिहा जो तुसीं फ्री हुंदे हो तो उदों ये प्रोग्राम जड़ा स्टार्ट किया जाता है सिर्फ तो सिर्फ 102.7 FM रेनबो दे। घर नूं किद्दां साफ सुथरा रखना है, की आपां चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह आपां घर नूं डेकोरेट कर सकते हैं। एंड नाल दी नाल घर दे विच पिया होया कई बार सानूं लगता है कि वेस्ट मटीरियल हैगा उहनूं वी आपां डिजाइन करके उहदे विच कुछ चेंजेस लिया के उहनूं आपां मतलब अपने शोपीस या डेकोरेशन दे विच रख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यह जी प्रोग्राम होम स्वीट होम एंड थोड़ी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप तुहाडे नाल है। 1 बजे तक यह पूरा प्रोग्राम है, तुसी बने रहना, जुड़े रहना जी इसी प्रोग्राम के नाल, क्योंकि बड़ी सारी जानकारी तुहानू इस प्रोग्राम के विच अज मिलन वाली है। सो पहली गल करांगे रणजीत बाबा दे इस गीत दा, ते उस तो बाद ये ग्राफ चैक हो जाएगा, तो फिर आपां तुहाडे नाल सीधी गलबात।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz।

और बिल्कुल दोस्तों, उसी तरह असी भी तुहाडे नाल पूरा साथ ते पूरी दा पूरा वादा निभावांगे, क्योंकि जी प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, ते इहदे विच जानकारी देनी तां साडी बनती है। जिते गर्मी दे विच पसीना आउंदे नाल की की नुकसान हो सकदे ने, सानूं किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रखना चाहिए उहदे बारे मैं गल कीती है। हुण मैं तुहानूं दस्सण जा रही हाँ कि गर्मियां दे विच जिहड़े फल आ रहे ने, मौसमी फल जिहड़े सीजनल फ्रूट होंदे ने, ओह किहड़े किहड़े ने ते उहनां दे खाण दे नाल सानूं की बैनीफिट्स हो सकदे ने। सब तो पहला आउंदा है जी तरबूज, यानी कि वाटरमेलन। शरीर नूं हाइड्रेट रखता है, हीट स्ट्रोक तो बचाव विच बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इहदे विच बहुत सारा पानी हुंदा है। और मिठा मिठा लाल लाल बाहरों हरे रंग वाला ये तरबूज, जिन्हों किसी एरिया दे विच हरियाणे और राजस्थान दे विच मतीरा भी कह के बुलाउंदे ने, कहिंदे ने, इहदे विच वाइटामिन ए ते सी हुंदा है, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा दे विच हुंदा है। सो तुसीं देखो कि ये किन्ना ज़्यादा फायदेमंद है साड़ी सेहत वास्ते, खास करके आ महीना कि जिहड़ा इहदा सीजन हुंदा, इहनूं जरूर खा लिया करो या फिर इहदा जूस बना के पिया करो। एंड दूजा फ्रूट है जी अंब, मैंगो, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति वधाउंदा है साडे शरीर दे विच, और जिहड़ियां साडियां पाचन क्रियावां ने ना उहनां नूं भी बैटर बनाउंदा। सो पाचन विच कोई भी चीज़ असी तली चीज़ या कोई भी चीज़ असी खा लैंदे हां ते उहनूं फिर इह पचाउण दे विच मदद करदा है। ऊर्जा दा वधिया स्रोत हैगा, मतलब किन्नियां चीज़ां ने, किन्ने सारे फल ने जिन्हां दे विचों सानूं किन्नियां बैनीफिट्स मिलदे ने।

जी दोस्तों, गिप्पी गरेवाल, बी पराक एंड दीपक ढिल्लों की आवाज़ के ट्रैक इंजॉय किया जी। गवाची फिरदी सामे 102.7 FM ते प्रोग्राम चल रहा जी, होम स्वीट होम। एंड थोड़ी आर जी दोस्त रणदीप है थोड़े नाल। गर्मी दे विच किन्ना एहतियात वरतना चाहिए है, किन्ना ख्याल रखना चाहिए, और नाल दी नाल खाण पीण वाली चीज़ा जिदे विच साढ़े फल आउंदे ने वह किहड़े किहड़े सन, ते उहनां दे विच की फायदे ने, उहनां दे खाण दे नाल सानू की बैनीफिट्स हो सकदे ने, उहदे बारे मैं तुहाडे नाल सांझ पाई है। हुण गल करांगी मैं जी सब्जियां बारे, जिहड़ियां कि गर्मी दीआं सब्जियां ने और हरे हरे रंग दीआं सब्जियां ने। जी उहनां दे विच आउंदा जी खीरा, जिहड़ा कि असीं सैलड दे विच बेशुमार खा लैंदे हां, शरीर नूं ठंडा रखदा है, पानी दी मात्रा बहुत ज़्यादा हुंदी है इहदे विच, ते साडे जिहड़ा वजन हैगा ना वेट उहनूं कंट्रोल दे विच करन दे विच वी इह

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

वेलकम बैक 102.7 एफएम पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी मिड डे मेलोडीज। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ मैं उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, लिसनर्स का स्वागत करती हूँ जो हमारे साथ 103.6 यानी कि आकाशवाणी अमृतसर से भी जुड़ चुके हैं। उन सब का तहे दिल से स्वागत, वेलकम। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहुत ही प्यारे गीत के साथ। फिल्म है रेड रोज़ और इस फिल्म के गीत को गुनगुनाया है जी किशोर कुमार जी ने। और फिल्म के बोल हैं, तेरे बिन जीना क्या,

रेड रोज़, और इस फिल्म के गीत को गुनगुनाया है जी किशोर कुमार जी ने, और फिल्म के बोल हैं, तेरे बिन जीना क्या,

0: क्या ख्याल है कोई अच्छी सी फिल्म देखी जाए?
1: मेरे हॉस्टल में एक वार्डन भी है
0: शारदा, तो इस कंपनी थ्री द क्राउड कबाब में हड्डी क्यों?
1: मेरा मतलब है अगर मैं हॉस्टल लेट पहुंची तो वार्डन बहुत गुस्सा करेगी।
0: अब नहीं तो फिर कब?
1: अगले संडे।
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस।

0: कल रात हमने एक सपना देखा।
1: क्या?
0: ऐसी सुनसान शाम थी, ऐसी ही सुनसान सड़क थी, ऐसी ही गाड़ी थी, और इसी तरह तुम हमारे पास बैठी थी, और फिर हमने गाड़ी रोक दी। फिर हमने तुम्हारी तरफ देखा और हमारी नजरें तुम्हारी नजरों से टकरा कर फिसली और तुम्हारे खूबसूरत लबों पर थम गई और हमने पहली बार तुम्हें चूम लिया।
1: आपने कार क्यों रोक दी?
0: यूं ही ख्याल आया, क्यों ना इसी पल उस सपने को हकीकत में बदल दिया जाए।
1: नहीं, शादी से पहले आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते।
0: शारदा, आई लव यू।
1: नहीं प्लीज,
0: आई लव यू, आई लव यू।
1: छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज।

102.7 एफएम पर प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज एंड अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है हिना जो कि 1990s में बनी थी यानी कि 1990 की समय में ये फिल्म रिलीज हुई थी और हिना की बहुत से खूबसूरत गीत हैं जो मेरा दिल कर रहा है कि बार बार मैं आपको सुनाऊँ लेकिन

जी दोस्तों, छोटा जे कमर्शियल ब्रेक, एंड ब्रेक तो बाद प्रोग्राम फिर तो कंटिन्यू कर दिया। प्रोग्राम का नाम है जी मिड डे मेलोडीज। और उस दौर दे विच जदों लता मंगेशकर, रन किशोर कुमार जी, आशा भोंसले जी उन्हां दी आवाज़ दे हर कोई दीवाना सीगा। और उस दीवानगी नूं अज भी जिउंदा त्यों ही हर कोई जिउंदा, उन्हां दे गीतां नूं, उन्हां दे गाणियां नूं, मतलब उन्हां दी बोलां नूं, मतलब इदां लगदा है कि सच्ची आवाज़ जिहड़ी है खुद सरस्वती उन्हां दी कंठ ते आण के विराजमान सीगी। और मिश्री वर्गी बोल लगदे ने उन्हां दे हर एक गीत दे विच।

प्यार वो नहीं जो शब्दों में कहा जाए, प्यार वो सच्ची में नहीं होता जो शब्दों में बयां किया जाए, प्यार वो तो वो होता है जो खामोशी में भी निभाया जा सके और बिना बोले बिना कुछ कहे उसको महसूस किया जा सके। सच में प्यार वो शब्द है, वो एहसास है जिसमें आप जितना भी खोए जाओ उतना ही वो कम लगेगा। लेकिन अगर आप अपने जज्बातों को अपने शब्दों को बयान करने जाते हो तो फिर अगला पर्सन आपको नहीं समझ पाता, तो समझें कि उसको आपकी कदर नहीं है। 102.7 FM पर एंजॉय कर रहे हो आप मेरे साथ, रणदीप के साथ प्रोग्राम चल रहा है जे मिड डे मेलोडीज़।

लता जी की बहुत ही सुरीली आवाज़ में आपने ये गीत एंजॉय किया। हमने सनम को खत लिखा और खत में लिखा, तलब है कि तुम मिल जाओ, मुझे बस एक ही तलब है कि तुम मुझे मिल जाओ, और हसरत ये है कि ज़िंदगी भर के लिए। वाह क्या बात है, मतलब चंद अल्फाजों में आपने कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। तलब है कि तुम मिल जाओ और हसरत है कि ज़िंदगी भर के लिए, वाह क्या बात है। और कविता कृष्णमूर्ति कृष्णा की आवाज़ में जो अगला ट्रैक है प्यार हुआ चुपके से, मतलब ये सॉफ्ट सा म्यूज़िक और प्यार भरे गाने अफसाने प्रोग्राम मिड डे, मतलब दिन का ये समा मिड डे, मतलब मिड डे वाला होता है और साथ में प्रोग्राम भी हो मिड डे मेलोडीज़, मतलब ये मेलोडीज़ के रंग नए और पुराने अफसाने आपके और हमारे ज़माने के। लीजिए सुनते हैं

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवा टैक सम्मेलन में शामिल होणगे। वो अज पैरिस विच फ्रांस के प्रमुख व्यापारक आगुआं नाल उच्च पद्धरी मीटिंगां भी करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे हासिल करने लई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा विच पिछे ना रह जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतुब्रत बैनर्जी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा च विरोधी धिर का नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने तो इनकार कर दिता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे च 7 लोगों की मौत हो गई है। FIH महिला नेशनस कप हाकी में भारत आज यूरुग्वे को 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवा टैक सम्मेलन में शामिल होणगे। वह भारत की तकनीकी तरक्की ते नवीनता नूं दुनिया सामने रखणगे। यह यूरोप का सब तो वड्डा तकनोलॉजी ते स्टार्टअप इकट्ठ है। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि श्री मोदी एक विशेष समागम में भारतीय भाईचारे के मैंबरां नाल भी गलबात करनगे। इस तो पहला G7 सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कई आलमी नेतावां नाल मुलाकात की ते आलमी दक्षण के मुद्दों नूं प्रमुखता नाल उठाया। इस दौरे नाल भारत फ्रांस संबंधों को होर मजबूत होने की उम्मीद है। भारत फ्रांस आर्थिक और उद्योगिक सहयोग को होर मजबूत करने के यत्नों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारक आगुओं नाल उच्च पद्धरी मीटिंगों में भी हिस्सा लेंगे। यह साझेदारी भारत और फ्रांस विचकार वधदी आर्थिक भाईवाली को दर्शाती है। अमरीका ते ईरान विचकार एक इतिहासिक जंगबंदी समझौता लागू हो गया है। इस विच एक व्यापक शांति समझौते ते गलबात लई 60 दिन का समा दिता गया है। स्विट्जरलैंड विच एक मीटिंग तो पहला इलैक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए गए 14 समझौते विच तुरंत जंगबंदी शामिल है। इस समझौते विच ईरान के परमाणु प्रोग्राम ते खेतरी सुरक्षा मुद्दों को हल करने लई एक ढांचा तय किया गया है। समझौते तहत अमरीका ईरानी बंदरगाहों तो अपनी समुद्री नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और आम समुद्री आवाजाई को बहाल करने लिए काम करेगा। ईरान 30 दिनों के अंदर हॉर्मुस जल मार्ग राही व्यापारक जहाजों लिए सुरक्षित आवाजाई यकीनी बनाएगा। समझौते तहत ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। समझौते में ईरान लिए पाबंदियों तो राहत आर्थिक पुनर्निर्माण भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन दौरे पर ने। अपने दौरे के पहले दिन वह इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचे जिथे उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। इंदौर तो राष्ट्रपति प्रजापिता

0: ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों आयोजित आत्मिक जागृति राही आदिवासी भाईचारे का शक्तिकरण विषय वाले प्रोग्राम में शामिल होने लिए बैतूल गए। इकट्ठ को संबोधन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी भाईचारे को समर्थ बनाने के उद्देश्य यह कानफ्रेंस ना सिर्फ इलाके लिए सगो पूरे देश और समाज लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी वालों की गई पहलकदमी की शलाघा की तो कहा कि यह देश के विकास में आदिवासी भाईचारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के टीचे हासिल करने लिए यह जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा में पिछे ना रह जाए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: उन्होंने कहा कि समाज आदिवासी भाईचारे तो चौगिरदा संभाल के कुदरत नाल एक सुरता विच रहण बारे सीख सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पछमी बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंदर बोस वालों बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक रितब्रत बैनर्जी विरोधी धिर का नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने तो इनकार कर दिता है। जस्टिस कृष्णा राव के बेंच ने TMC विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय वालों दायर पटीशन से सुनवाई करद यह निर्देश दिता। श्री चट्टोपाध्याय ने विरोधी धिर के नेता लई उन्हां दी नामजदगी रद्द करन अते रितब्रत बैनर्जी की नियुक्ति नूं चुनौती देने वाली पटीशन दायर की सी। अदालत ने प्रतिवादियों नूं 3 हफ्तिया अंदर हलफनामा दायर करन दा निर्देश दिता, जदकि पटीशनकर्ता नूं जवाब दायर करन लई 2 हफ्ते होर दित्ते ने। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई नूं होएगी। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल है @AIRRNU जलंधर। भारत ने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश अगवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों राही संचालित एक शानदार तब्दीली की है। इस समय दौरान मोदी सरकार ने गरीबा किसाना औरतों और नौजवानों की भलाई और शक्तिकरण एक प्रमुख पहलकदमिया कई प्रमुख पहलकदमिया की ने। आकाशवाणी खबरों वालों ताडे लिए पिछले 12 सालों में मुख्य खेत्रों में सरकार दी पहलकदमियों बारे एक विशेष लड़ी पेश की जा रही है। अज असी नक्सलवाद के खात्मे ते नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास लिए सरकार वालों चुके गए कदमों बारे गल करांगे। एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी सरकार दी तालमेल वाली बहुपक्षी रणनीति कैलिब्रेटेड सुरक्षा कारजा नक्सलवाद के माली वसीलिया नु रोकण अते तेज विकास दीआं कारवाइयां दे सुमेल दे नतीजे वजों देश नक्सलवाद ते माओवादी दहशत तो मुक्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा तौर ते ऐलान कीता सी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश विचों नक्सलवाद नु पूरी तरह खत्म कर दिता जाएगा ते ए वादा हुण पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक निवासी ने सरकार के यत्ना की शलाघा करते हुए कहा कि इसने देश को नक्सलवाद तो मुक्त करने के अपने वादे को निभाया है।
3: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: झारखंड के गुमला जिले के निवासी तेंबू राव ने कहा कि जदों तो मोदी सरकार बनी है नक्सलवाद हौली हौली खत्म हो गया है, लोग शांति ते सद्भावना नाल रह रहे ने।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गांव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अभी
2: आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी दहाकिया दी हिंसा दौरान लोकतंत्र विकास संविधान दी जीत दा प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
0: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 औरतें शामिल ने। पुलिस ने दसा कि हादसा राती 2 बजे के करीब वापरिया। मुढ़ली जांच तो पता लगा है कि हादसा उस समय वापरिया जदों ड्राइवर का वाहन ते कंट्रोल नहीं रहा तो यह खड्ड में डिग पिया। पुलिस और स्थानक निवासियों की मदद नाल सारिया लाशां खड्ड विचों कढ लईआं गईआं ने। चंबा के पुलिस सुपरडेंट विजय सकलानी ने कहा कि लाशों को पोस्टमार्टम लिए चंबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा के सत्कार नाल मनाया जा रहा है। तरन तारण स्थित गुरद्वारा श्री दरबार साहब विखे विशेष समागम कराए जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचकूला में गुरद्वारा

जी दोस्तों, खबरों तो बाद कंटिन्यू कर दिया जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज एंड लता मंगेशकर दा एक होर गीत दिलबर दिल से ही प्यारे, और वो दिलबर कितना प्यारा है ये तो हम इस गीत में सुन लेंगे और महसूस करेंगे कि वाकई में सच्ची में जितने प्यारे ये गीत हैं उतने ही प्यारे होते हैं हमारे प्रोग्राम।

जी हमें कहाँ था शौक की मोहब्बत करनी है, हमें कहाँ था शौक की मोहब्बत करनी है, बस नज़र तुम पर गई तो तुम्हारे होकर रह गए। 102.7 FM पर एक प्रोग्राम चल रहा है जी, मिड डे मेलोडीज, और स्टूडियो की घड़ी पर 1:54 और कुछ सेकंड हो चुकी है, यानी कि ये समय जो है अब आपको बाय बाय कहने वाला है, क्योंकि इसके बाद 2 बजे अगला प्रोग्राम होगा और उसके आरजे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल मुझे लेनी है इजाज़त आप सब से, तो सब नू कहना है जी हूँ अपना ख्याल रखियो, गर्मी दी बहुत सारिया गल् हो गई, तो गर्मी वाकई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी के बच्चे किदा तुम अपना ख्याल रखे, आप गलबात की है, पानी पीते रहो, धुप जान तो गुरेज करो, तो जी नाल दी नाल जंक फूड फास्ट फूड के तलिया हुई चीज़ों का भी तुम्हें परहेज करना है। आखिर दे विच लता और किशोर कुमार जी होना की आवाज़ दे विच प्यारा जिहा गीत तुहाडे रेडियो सैट से, तो फिर जल्द मिलांगे किसी होर दिन बहुत सारिया गल्लां ते बहुत सारे गीतों के नाल। तद तक लई मैनू दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। तो तुसी अपना शो जड़ा सुन रहे दिल आज शायर है। सो दिल आज शायर है दे विच सानू बड़े खूबसूरत सुनेहे आने शुरू हो गए ने। सो असी पढ़ना शुरू करते हैं। सो जड़ा पहला मैसेज सानू आया जी, ये लिखते ने एफएम अगेन ने इमोजी बनाई बड़ी खूबसूरत रेनबो। दिल आज शायर है रोज़ भेज के कहते हैं आरजे जोरावर सिंह जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है कि प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर अगर प्यार करो सच्चे दिल से तो वह प्यार ही जीने की वजह बन जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही गल है। जे सच्चे दिल तो कोई भी काम किया जाए, प्यार किया जाए, काम किया जाए तो इबादत ही बन जाता है। क्या बात है, जीने की वजह बन जाता है। किरण रूला जी, ग्रीन पार्क कपूरथला, धन्यवाद साहब। हमारी तरफ से भी धन्यवाद आपका। हम खूबसूरत जब भी मैसेज पढ़ते हैं तो हमारा दिल बागो बाग हो जाता है। तो आज आपने अपने इस मैसेज में भी गुलाबों का बाग लगा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो अगला मैसेज जड़ा है भेजा जी पाली जी। सो लो जी, उस तो पहला सी तुहानू दस दिए कि किरण नरूला जी ने सानू थैंक यू सो मच का भी मैसेज भेज दिता, बड़ा खूबसूरत। सो अगला मैसेज पाली जी। सो पाली जी लिखते हैं कि ना रंग ना जात ना नसल ना औकात दियां गल्लां ने, यही तो बस सोने यार दियां गल्लां ने। मोहब्बत जिस्म नहीं, जिस्मां तो पार दियां गल्लां ने। ओए होए होए, क्या बात है पाली साहब, वाकई कमाल दी गल है जी। मोहब्बत जिहड़ी है वो जिस्म तक सीमित नहीं रहिंदी, मोहब्बत जिहड़ी है वो जिस्मां तो पार दियां गल्लां।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा

0: और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में 2 जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि क्या

आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।

0: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और

0: जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह,

0: अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक बहुत स्पेशल, बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम एक स्पेशल डिजीज की बात करेंगे और उस डिजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं, इस विषय पर भी वो बात कर चुके हैं। तो हम बता दें आपको सीधे से कि आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म, दोनों में से जो भी आप इसे समझें, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि ये किस तरह की डिजीज है और इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से इसका उपचार, निदान, लक्षण, सारी बातें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके लिए जानने की। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर शेफाली गुलाटी। आप ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है मैम।
2: धन्यवाद, नमस्कार सबको।
1: हमारे दूसरे एक्सपर्ट योगेश कुमार, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑटिज्म पर आपका बहुत काम है। आप बच्चों के साथ जो ऑटिस्टिक बच्चे या साथ साथ न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स बच्चों के होती है उनके रिहैबिलिटेशन पर बहुत काम कर रहे हैं। आपका रिसर्च बहुत तगड़ा है। तो आज बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि योगेश कुमार और डॉक्टर शेफाली के माध्यम से हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे उसका लाभ हमारे श्रोता जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और बस कार्यक्रम का आगाज हम कर चुके हैं, हमें इंतजार है कि आप प्रश्न करें, इसमें भाग लें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और अपने जो गेस्ट हैं उनको एक बार कहेंगे कि हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें, पर पहले एक प्यारा सा गीत, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम अपने श्रोताओं के साथ सुन लें।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पर. ऑटिज्म क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं. डॉक्टर शिफाली,
1: ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक अभाव, सोशल इंटरेक्शन होती है और संचार, कम्युनिकेशन होती है.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पर. ऑटिज्म क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं. डॉक्टर शिफाली,
1: ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक अभाव, सोशल इंटरेक्शन होती है और संचार कम्युनिकेशन होती है उसमें गुणात्मक हानि होती है, और उसके अंदर कुछ उनके पास कोई दुहरावनीय व्यवहार होते हैं, फिक्स्ड उनकी रुचिज होती हैं, और कई बार होता है कि उनको खिलौनों को लाइन में लगाना है, स्कूल को एक ही रास्ते से जाना है, और दूसरा इनमें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं. कभी जैसे कोई साबुन वगैरह को स्मेल करेंगे, आसपास आवाज़ नहीं आ रही फिर भी कान पे हाथ लगाएंगे, तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, सामाजिक हावभाव और संचार, और बेसिकली कुछ फिक्स्ड उनकी रुचि और उनके जो रेपिटेटिव जो दुरावनीय व्यवहार है, ये सब मिला के ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बताया जाता है.
0: जी जी,
2: देखिए अगर हम ऑटिज्म का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है आत्म केंद्रित, स्वलीनता. तो ऐसे बच्चे जो हैं दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनकी एक अपनी दुनिया होती है और एक ही रिजिड रूटीन होता है, और ये इतने रिजिड होते हैं कि अगर इनको स्पेसिफिक कोई खाना अच्छा लगता है तो लगातार उसी की डिमांड करते हैं कि वो खाने में वही पसंद करेंगे. और ये किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन है उसका बहुत प्रतिशोध करते हैं. अच्छा. इनको चेंजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. तो ये सारे जो हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लक्षण होते हैं, और इसमें सबसे जो मेन बात है कि दे फोकस ऑन द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रैदर देन द होल. जैसे एक अगर एक खिलौना है, टॉय है, अगर एक उसका पहिया है, तो वो पूरे टॉय से खेलना पसंद नहीं करेंगे, उनका जो ध्यान जो केंद्रित होगा उस व्हील को लेकर होगा और इसको ही स्पिन करते रहेंगे
0: जी.
2: तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटिस्टिक बच्चों में पाई जाती हैं, और सबसे मेन जो चीज़ है कि लैक ऑफ एम्पैथी, जो समानुभूति की कमी होती है, ये अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं
0: जी.
2: और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लियो कनेर, एक अमेरिकन चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने 1943 में ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया.
0: डॉक्टर शेफाली, आप कुछ कहना चाह रही थी.
1: हाँ, ये कहना चाह रही हूँ कि दो बच्चे जो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो भिन्न है. हर जो लक्षण है हर बच्चे में नहीं होते, और हर एक की सीवियरिटी जो है, गंभीरता हर एक में अलग अलग होती है.
0: बिल्कुल
1: ना, जैसे अभी आपको बताया योगेश जी ने, तो उसमें हम लोग आप बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के आईज टू आई कॉन्टैक्ट लगा रहे हैं. जैसे इन्होंने स्पेशली बताया व्हील ऑफ अ ट्रक होता है, उनको जनरली स्पिनिंग चीजें पसंद है.
0: अच्छा.
1: वो अगर आप बोलोगे ना लड़कियों को यू नो बारबी डॉल पसंद है या लड़कों को रेसिंग कार है, पर जैसे बताया कि इसमें व्हील पसंद है और जनरली स्पिनिंग वाले. पर ये हमें समझना है कि हर बच्चा भिन्न है, और कई बार होता है कि वो अपने मन में अपने आप में लाइक बच्चों से पेरेंट्स से पूछो तो हाँ दूसरों के बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन दूसरों के बच्चों के बीच में अपने आप ही खेल रहा है. तो जो स्वलीनता वाली बात आ रही थी, पर जो इसलिए देखना है वो जनरली मिक्सअप नहीं होना चाह रहा. पर ये जो चीजें हैं, अगर आप उसको आवाज लगाओ तो वो प्रिटेंड करेगा कि आवाज नहीं सुनी, पर सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनवाई सही है. लेकिन ये सारी चीजें ना किसी भी बच्चे को टेम्पर टैंट्रम से भी हो सकती है. तो हमें समझना है कि ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी है, और जैसे हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक में लक्षण अलग अलग होते हैं, और हर एक हमें भी बताना है कि ये पहले एक जमाने में होता था कि नॉर्मल अब नॉर्मल, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. फिर हो गया न्यूरोटिपिकल और स्पेशल नीड्स, अब वो भी खत्म हो गया. क्योंकि हम जब स्कूलों में खुद भी पढ़ते थे तो हमें पता है कि चार पांच लोग मर मर के पास होते थे
0: जी,
1: और चार पांच टॉपर ही थे, वो लड़ते रहते थे फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए, और बाकी मोस्टली बीच में आते थे. तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ नॉर्मल डाइवर्सिटी. तो अभी ये कहा जा रहा है तो हम स्पेशल नीड्स वगैरह भी ना बोल के इसको एक न्यूरो डाइवर्सिटी करके माने, और जो भी हम लक्षण ये जो बताए, इतने सारे बताए और भी हैं और लक्षण, तो वो एक तो हर एक में नहीं होते, पर ये देखना है पेरेंट्स को कि अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर समय ऐसे लक्षण हो तो चिंता का विषय है, लेकिन किसी भी बच्चे में ये कभी कभार तो हो ही सकता है.
0: जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने मेंशन करी. और एक चीज़ और जो आपने अभी अभी बोली कि हर कोई अलग है, हर इंसान अलग है, हम सिर्फ बच्चे की बात ना करें, हर इंसान अलग है, उसके कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, हम उसके साथ जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं. एक टोटली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये समझ में आता है आपकी बात से कि वो भी पूरे राइट्स रखते हैं, लेट अस इंक्लूड देम इन आवर सोसाइटी एंड
1: दे आर पार्ट ऑफ अस. आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब वी आर नॉट टू से कि क्योंकि हम लोग सब लोग, हम लोग जब जो फेल होने वाले और टॉपर सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तो ये सारे भी थोड़े से सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर, उनके सोशलाइजेशन में, उसके सामाजिक जो हमारे अपने

0: एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो नहीं फिट बैठ रहे, तो डजंट मीन कि वो हटके हैं. और हर इंसान का, हर जीव का इक्वल राइट टू लाइफ, इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इक्वल राइट टू एजुकेशन है. तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, एवरीबॉडी इज हैविंग देयर राइट.
1: बिल्कुल. और इसमें सोसाइटी का रोल, पीयर्स का रोल, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, रिलेटिव्स का रोल बहुत अहम हो जाता है जब इस तरह से हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं. वो हम बाद में बात करेंगे. लक्षण आपने बताए, मुझे ये थोड़ा सा समझना है अपने श्रोताओं के लिए, क्या कारण हो जाता है जिसमें ऑटिज्म हो जाता है? क्या ये जेनेटिक है या ये ऑक्यूपाइड है या एनवायरमेंटल है? व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इट?
0: एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ऑटिज्म जो है 4.5 गुना लड़कों में ज्यादा पाया जाता है लड़कियों से. ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है पिछले 2 डेकेड से बहुत ज्यादा बढ़ गया है. USA में 312% उसका जंप हुआ है इन द लास्ट 20 ईयर्स. तो हमारा इंडिया में, हमने जो अनुसंधान किया था 2011 में, इंक्लिन स्टडी किया था, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पूरी इंडिया का हमने लिया था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल बाय साइज में 1 in 89 था फिगर ऑफ 2011 डेटा. राइट, तो प्रेवलेंस बढ़ रहा है. अब कारण क्यों है, इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कारण क्यों है. दे कैन बी सम अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल जो हमारे एनवायरमेंट में है, और कुछ जो है एपिजेनेटिक. क्योंकि मैं जो पैदा हुई हूँ, मेरे को जीन्स तो जो मिली है तो मेरे को आधी मम्मी आधी डैडी से मिली, उसको तो कुछ कर नहीं सकते. पर उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स को उसको इफेक्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड एपिजेनेटिक. तो अब अगर आप जेनेटिक वाले कारण में लेंगे, इनमें कुछ कई सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस क्लोरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमोटिस वगैरह बहुत सारे सिंड्रोम. प्लस इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर काफी सारे जीन्स हैं जिनके अंदर पाए गए हैं कुछ कॉपी नंबर वेरिएशंस. पर अभी भी अनुसंधान जारी है. हमारे यहां भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एडवांस रिसर्च ऑन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे भी ये शोध जारी है पिछले 7 साल से, कि समझने के लिए कि क्या अनुवांशिक कारण है. इन्वायरमेंट कारण बहुत चौंकाने देने वाले हैं. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट मदर्स, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन द चाइल्ड, देन पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर. हमारे खान पान में इतना पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन है. फादर्स एडवांस्ड एज, मदर्स एडवांस्ड एज, हमने फादर्स के स्पर्म्स के एपिजेनोम का हमने स्टडी किया तो मिथाइलेशन डिफेक्ट मिले. हम सबकी तो हमारी सारी लाइफ स्ट्रेस से भरी है. तो स्ट्रेसफुल लाइफ्स इवन ऑफ फादर्स हैव बीन शोन. तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में है, और जो एनवायरमेंट जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट करेगा, आई फील वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होगा. बिकॉज हम एनवायरमेंट को जब चेंज कर देंगे तो फिर वी कैन इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स.
1: वेरी राइट.
2: हाँ, जैसे कारण आपने बताया कि एनवायरमेंटल रहे, तो इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा. अब जैसे आजकल स्क्रीन टाइम का बहुत चर्चा में है और इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम, इवन नॉर्मल बच्चे भी अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो मैंने देखा गया है उनमें ADHD या एग्रेशन की शिकायत बहुत हो जाती है. ऐसे ही ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जो 2-3 साल तक बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए अगर 2-3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से अगर बड़े बच्चे हैं उनका भी जो स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए अंडर द पेरेंट

0: स्क्रीन टाइम, इवन नॉर्मल बच्चे भी अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो मैंने ये देखा गया है उनमें ADHD या एग्रेशन की शिकायत बहुत हो जाती है। ऐसे ही ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जो 2-3 साल तक बच्चों का ज़ीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए अगर 2-3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से अगर बड़े बच्चे हैं उनका भी जो स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए अंडर द पेरेंट्स गाइडेंस होना चाहिए, कि जिससे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम हो रही है और उनमें जो इरिटेबिलिटी सिंड्रोम आ रहे हैं ये सारी चीज़ें ना आए। और दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये भी देखा गया है कि बच्चे का अगर वेट कम है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ये भी जो है एक ऑटिज़म का कारण बनता है। और सबसे जो पहले जो सबसे ज़रूरी एक है इसमें वो है प्रीनेटल हाइपोक्सिया। प्रीनेटल हाइपोक्सिया भी कई कारणों से होता है कि क्रॉनिक मैटरनल इलनेस है, अगर हाई एल्टीट्यूड प्रेगनेंसी है इससे भी जो हाइपोक्सिया हो सकता है, और अगर जो है माता जो है अगर मदर जो है बच्चे की अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है या सिगरेट्स पीती है तो ऐसे बच्चों में संभावना जो ऑटिज्म की बढ़ जाती है।
1: क्या
0: और
1: ये फैमिली इसमें भी रन करता है,
0: जी
1: थोड़ा सा
0: जी
1: जानना
0: मैं
1: चाहूँगी?
0: अराउंड 80% ऑफ द ऑटिस्टिक केसेस कैन बी लिंक टू द इनहेरिटिटिक जेनेटिक म्यूटेशंस। तो
1: आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शेफाली? जी
2: इसके अंदर एनवायरमेंटल कारण बहुत है, उन पे बहुत शोध हो रहा है, एड ऑन जो कर रहे हैं बहुत सारा, इवन डायबिटीज इन मदर्स बहुत सारा चल रहा है, वो अभी शोध चल रहा है। लेकिन ये जो हेरिटेबिलिटी की बात कहेंगे, तो अगर आप देखें कि दो बच्चे ट्विंस हैं, अगर वो सेम सिमिलर ट्विंस हैं तो उसमें 70 से 80% कॉन्कॉर्डेंस है, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो 30 से 30% के करीब। अगर एक फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज्म है और वो लड़का है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क 4% होता है, 4% ओवरऑल जो सारी स्टडीज का कुलेट करके दिया है। लेकिन एक लड़की को अगर ऑटिज्म है, लड़की है तो कम लोगों लड़कियों को होता है ऑटिज्म, तो उसमें रिकरेंस रिस्क 7% है।
1: अच्छा,
2: अब आप बोलोगे रिकरेंस रिस्क क्यों है, क्योंकि एक लड़की में मैनिफेस्ट होने के लिए जो जेनेटिक डिफेक्ट का लोड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए रिकरेंस ज्यादा होता है। अगर दो बच्चों के अंदर फैमिली में ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 30 to 35% होता है। एडिशनली एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 17.5% फैमिलीज में आपको हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ यू नो हैविंग सम बिहेवियर के इश्यूज, लाइक हमारे हम लोग देखते हैं कहीं बहुत गुस्से होते हैं, कोई मिलते नहीं है, यू नो, तो ऐसे 17.5% में बिहेवियर इश्यूज और पर्सनैलिटी इश्यूज फैमिली में होते हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और अभी भी ये पहेली है, इस पहेली पे बहुत ज्यादा शोध हो रहा है। पर एक चीज बता दूंगी, वैक्सीनेशन से कोई प्रूवन रोल नहीं है, वेदर कोई एक स्पेसिफिक वैक्सीन या वैक्सीन प्रिजर्वेटिव, तो वैक्सीनेशन के साथ कोई इसका नहीं है। स्क्रीन टाइम का जो बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली है, स्क्रीन टाइम हैज टू बी लिमिटेड, बट ऑब्वियसली बिकॉज पेरेंट्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को मोबाइल पढ़ा दिया ताकि वो शांत रह जाए।
0: और इसमें एक नई रिसर्च निकल के आई है कि आजकल जो सिम्टम्स हैं एसोसिएटेड विद द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर इन द ऑटिस्टिक चाइल्ड, और जो एंग्जाइटी है और जो अटेंशन डेफिशिएंसी है वो हाई लेवल ऑफ ग्लूटामेट से भी जुड़ी हुई है, जो ब्रेन में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका हम लेवल हम कम कर सकते हैं अगर हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, मैग्नीशियम्स लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं। और ये ऑटिस्टिक बच्चे अगर थोड़ा योगा करते हैं, उनका इंक्लिनेशंस अगर पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर जो है योगा की तरफ इवॉल्व करते हैं, तो इनमें जो है ग्लूटामेट का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है।
1: जी जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। एक और प्रश्न, जब डॉक्टर शेफाली आप बता रही थी बच्चों में जो प्रेवलेंस कैसे बढ़ती है, तो मेरे एक प्रश्न दिमाग में आया कि किसी का एक बच्चा ऑटिस्टिक हुआ है तो कितने चांसेस हैं कि दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा?
2: अभी मैंने बोला अगर वो लड़की है तो 7% जनरल रिस्क है, अगर लड़का है तो 4%।
1: अच्छा,
2: लेकिन एक चीज देखना है कि अगर उसको डाउन सिंड्रोम था, सपोज एसोसिएटेड कोई आपको मिल रहा है, डाउन सिंड्रोम दिख रहा है, ट्यूबरस क्लोरोसिस दिख रहा है, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हम दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, उस डाउन सिंड्रोम का प्रेवलेंस के लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग होगी और उसके लिए उसके अंदर। पर वो अदरवाइज 4 and 7% इज। एक और चीज था, योगा मेंशन हुआ है।
1: हाँ,
2: योगा मोस्टली स्टडीज जो है, मैंने उसमें काफी निकाल के रिसर्च देखा कि हमारे इंडिया से एक स्टडी थी और विदेशों से बहुत सारी स्टडी थी, विच इज अनफॉर्चुनेट। हम भी अभी एक स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड देयर इज एन एविडेंस कि आप उनको योगा सिखा सकते हैं, बिकॉज हम लोग ये नहीं कि जितना उसके अंदर अपने आप नहीं समझेंगे, तो जो थेरेपिस्ट हैं उनको, जो योगा के थेरेपिस्ट हैं उनको पहले बीमारी समझानी पड़ेगी, फिर जो हमारे को उसके टास्क को उसको स्मॉल स्मॉल करके ब्रेक करके योगा कराना।

0: और उसको स्केचेस वगैरह के साथ, दे आर वेज टू टीच चिल्ड्रन विद ऑटिज्म योगा, एंड योगा हैज शोन बेनिफिशियल रिजल्ट्स. आई थिंक हमें इंडिया में और रिसर्च करना चाहिए.
1: यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर कलेक्टिव जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है, एज ए टीम अगर काम करता है, स्पेशल एजुकेटर है, पेरेंट्स है, योगा थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और योगा पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है मैडम, क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है इतना पावरफुल बनाती है, जो कि उसमें वीक होता है ऑटिस्टिक बच्चों में.
2: तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट योगेश, जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, ही इज अ योगा टीचर थेरेपिस्ट.
1: और मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादा जो सीवियर केसेस हैं उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, पर जो मॉडरेट ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, हमें योगा करनी चाहिए, बच्चों को योगा के लिए प्रेरित करना चाहिए. और मैं जब योगा करा रहा हूँ, साथ साथ म्यूजिक थेरेपी भी करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है.
2: जी जी, तो आप उसको एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. हमारी श्रोता जो है वो फोन लाइन पर है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं. हेलो.
3: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में.
3: शालिनी मित्तल जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
2: जी चट्ठा जी नमस्कार.
3: और हमारे डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम.
2: नमस्कार.
3: मेरा सवाल यह है जी, ऑटिज्म जो है वो बुजुर्गों में उनको इग्नोर करने से या अकेलापन होने से भी हो सकता है क्या, कृपया बताने का कष्ट करें.
0: नहीं, ऑटिज्म ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जो कि शुरू में ही होती है, लेकिन कई बार कई लोगों को पकड़ में नहीं आती है. हमें बाद में ओल्ड एज, मतलब ओल्डर में जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े में भी आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन वो बाद में हो सकती है. लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो जो है वो सो अलग है, वो एडल्ट न्यूरोलॉजी के अंदर उसमें होता है, उनमें चीज़ें जो एडल्ट्स में आती हैं उसमें बाद में जाके डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स और पार्किंसन, वो जो है ओल्ड एज के इश्यूज वो आते हैं. तो वो ये ऑटिज्म नहीं है कि वो बाद में आएगी, जो ऑटिज्म है वो शुरू में आती है, कई बार मिस हो जाती है पकड़ में आने और एडल्टहुड में हो, पर ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाके हो, पर वो वाली जो डिमेंशिया है और पार्किंसनिज्म वगैरह है वो सब हो सकते हैं.
2: तो हम आगे एक बात करेंगे कि इसको कैसे पकड़ना है और सही तरीके से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मिस हो जाती है और कई बार वो बाद में मैनिफेस्ट होती है, तो कैसे इसका निदान, कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ये हम बात करेंगे. पर इससे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, फिर लौट कर आएंगे. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी और योगेश कुमार, और हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। हमारे एक लिसनर हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो
2: जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से।
1: जी राजेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? आज हम ऑटिज्म पर बात कर रहे हैं।
2: जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार।
1: जी नमस्कार।
2: पहला सवाल मेरा है कि किसी शख्स को डिटेक्ट हो जाता है कि उसको जो ऑटिज्म है, तो क्या इसका घरेलू स्तर पर योगा, मेडिटेशन या फिर डाइट के तहत जैसे एलोवेरा, गिलोई और आंवला और केसर, इसका से इसका ट्रीटमेंट संभव है घरेलू स्तर पर? और अगर अस्पताल आना ही पड़े किसी वजह से मजबूरी में, तो क्या मेडिसिन और ये काउंसलिंग से इसकी रिकवरी हो जाती है या फिर कोई मतलब सर्जरी ही करनी पड़ती है? ये दो सवाल हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। डॉक्टर शेफाली बता रहे हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।
3: हाँ जी, पहले का है ट्रीटमेंट के लिए ना, जो बेसिकली अभी ऑटिज्म का जो मेन स्टे ट्रीटमेंट बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज होती है, ABA, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंडिकेशन वगैरह, जो इंडिविजुअलाइज किया जाता है बच्चों के लिए, और किसी जगह किसी चीज़ों में उनको दवाई दी जाती है। लेकिन जो दवाई दी जाती है उसके अंदर जो होता है, अगर उनको मिर्गी पड़ रही है उसका, या सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी बोलते हैं उसमें, या बहुत चंचल है, या बहुत अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सैल हो रहा है, इन सब सिचुएशन में मेडिसिन दी जाती है फॉर सम टाइम। पर मेन स्टे वो इंडिविजुअलाइज जो बिहेवियर बनाते हैं प्लान, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यू नो, और ये आपका जो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट वगैरह मिलके आपका इमीडिएट प्लान होता है। दूसरे एस्पेक्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अप टू 80% जो हमारे ऑटिज्म के पेरेंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खुद ही ट्राई करते हैं इंटरनेट से देख के, जिसमें बहुत सारे होते हैं जिसमें आप लोगों ने नाम लिए हैं। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं जिसके अंदर कई बार नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जैसे कि कीलेटिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स पे हमारा भी अनुसंधान चल रहा है जब, लेकिन हैवी मेटल्स जब हाई हैं तभी देनी है दवाई, उनकी दवाई वैसे ही दे दी तो उस पर नुकसान हो जाता है। तो वैसे कुछ वो लोग नुकसानदेह हैं, कुछ चीज़ों पे अभी अनुसंधान चल रहा है जिसमें पोटेंशियल बेनिफिट है, जैसे योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, जो हम लोग म्यूजिक थेरेपी भी कर रहे हैं, और साथ में ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट है, स्पेसिफिक डाइट है, आपका ऐसे एलोवेरा या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो चीनी बंद कर दिया किसी ने, दूध बंद कर दिया किसी ने, सिर्फ आटा बंद कर दिया, वो सब अलग अलग करते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमारा भी साइंटिफिक बेसिस है, ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट का ट्रायल किया है हमने, और उसमें हमारे अभी रिजल्ट्स फाइनल कर रहे हैं और हमें फ़ायदा लग रहा है, तो होगा तो वो प्रॉपर डाइट लेना है। तो ऐसे छोटा मोटा चीजें में नहीं, और आप नेट में पढ़ेंगे ऑटिज्म डालेंगे तो 7 बिलियन हिट्स हैं। तो अभी ऐसा है, आपको समझना है, अपने डॉक्टर से, थेरेपिस्ट सबसे मिले जिनका आपका प्लान बनाएगा, और डॉक्टर्स विल ऑल्सो गाइड यू कि जोन से भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ऊपर, क्योंकि अभी वो शुरू हुआ ब्रोकली के ऊपर, सल्फोरोफेन है, उसका भी अभी एविडेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं, पूरा एविडेंस नहीं है। तो इसलिए जब तक पूरी एविडेंस नहीं आती है, और कई सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कंप्लीट एविडेंस नहीं है, तो आप ऐसे ही मत ट्राई करिए। और एक ध्यान रखिए, आप कई बार सोचते हैं विटामिंस हैं, लिए जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, पर हम समझिए कि हमारे जो विटामिन्स हम लेते हैं, जैसे विटामिन सी है, वो तो यूरिन में चला जाता है बिकॉज वाटर सॉल्युबल है। विटामिन डी ई वगैरह जो है, दे आर फैट सॉल्युबल, तो एक्स्ट्रा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटीज हो जाती है। तो अपने आप ही समझ के इवन विटामिन्स के वगैरह के नाम से ऐसे नहीं लिए, इन सब क्यूरेटिव नहीं है।
1: जी जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शेफाली यहाँ बोल रहे हैं, कोई भी चीज को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह हार्मफुल भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि एक आपकी जो मुझे पता है एक साइट है या कोई नंबर्स हैं जहां पर एम्स की जो अप्रूव्ड चीजें हैं वो आप डालते हैं, वो मुझे अगर श्रोताओं के साथ साझा कर लेंगे तो।
3: एक हमारी वेबसाइट है www.ped, मतलब पीड मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, पीड न्यूरो एम्स, एम्स मतलब एम्स, PED NEURO AIIMS.org, उसमें जाएंगे तो उसमें पेरेंट्स कॉर्नर का सेक्शन है,

0: उसमें ऑटिज्म की काफी सारी किताबें हैं और उसके अंदर कई वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, और एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1800 11 3 बार 7 और 6, 1800 11 7 6। तो उसमें हमारी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नर्सेज होती हैं जो 13 अप्रैल 2018 से हमारी ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर चल रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, फॉर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है, और हमें समझना है कि इसके अंदर जो है, जो डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्नोसिस के लिए कोई आपको फैंसी टेस्ट नहीं चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, 1000 किस्म के टेस्ट करा के आते हैं, कुछ टेस्ट इंडिया में कराते हैं, कुछ बाहर भेज के कराते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसमें हम लोगों ने सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल्स बनाए हैं जो कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए हैं। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट है बिलिस्मत हमारे फैमिली में। एक एग्जाम्पल दूंगी, एक
1: जी
0: स्लीप क्वेश्चनेयर है हमने यूज किया, CSHQ, स्लीप चाइल्ड्रन स्लीप हैबिट क्वेश्चनेयर। उसमें एक सवाल है, बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ सोता है तो वो अब नॉर्मल माना गया है, उसकी स्कोरिंग वैसी हुई हुई है।
1: अच्छा
0: हमारे बच्चे तो 99%
1: नहीं
0: अपने साथ ही सोते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपको ये सारे सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल ही बनाने पड़ेंगे। तो
1: जी
0: हम लोगों ने ये टूल्स बनाए हुए हैं, वैलिडेटेड है, उसकी मोबाइल ऐप भी है, पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स। जल्दी से बोल रही थी क्योंकि नहीं बोल रही, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो डॉक्टर्स के लिए है।
1: अच्छा
0: तो पीईडी न्यूरो पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स ऐप है जो गूगल और एप्पल प्ले स्टोर में, पर वो अभी डॉक्टर्स के लिए है टू डायग्नोस। हमने स्क्रीनिंग टूल भी बनाया है जिसमें से पेरेंट्स सस्पेक्ट कर सकते हैं, इवन यू नो फ्रॉम 1 मंथ टू 2 ईयर्स। वो उसकी अभी ऐप बनाएंगे तो फिर वो पब्लिसाइज करेंगे ताकि पेरेंट्स उसमें कर सकें।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये सब जानकारियाँ होना, तभी हम उसका लाभ भी उठा पाएंगे। हमें एक ये मैसेज किया है रमन जी ने, द्वारका से लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है कि ऑटिज्म बच्चों की इको ले लिया कैसे फिनिश करता है, कैसे कम हो जाती है। योगेश आप बताना चाहेंगे इसके बारे में?
2: जी देखिए, ऑटिज्म इज मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट इन स्पीच एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो इसमें हमारा एकोलेलिया भी आता है। एकोलेलिया में क्या होता है कि रेपिटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज बाय द अदर्स। ऑटिस्टिक बच्चा दूसरा जो बोल रहा होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाता है, क्या आप इस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे, तो उसका आंसर होना चाहिए यस या नो में। पर वो यस या नो में आंसर ना दे के वो बोलेगा टॉय टॉय टॉय। तो टॉय टॉय का जो रेपिटेशन इसने कहाँ से लिया, जो उसने सुना, और इसे ही हम एकोलेलिया कहते हैं। और एकोलेलिया ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट भी हो सकता है। कभी एकोलेलिया होता है कि बाहर बच्चा किसी की कोई चीज़ सुनकर आ गया है, जैसे रमेश बहुत गंदा लड़का है, तो वो घर में आके उसे दोहराता रहेगा, रमेश बहुत गंदा लड़का है, रमेश बहुत गंदा लड़का है। तो इस टाइप की जो रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं बीइंग यूज्ड बाय द अदर्स, तो ये सारे एकोलेलिया में आते हैं।
1: जी, ये हमें एक मैसेज किया है परिधि ने, इन्होंने लिखा है मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड आई वांट टू थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड ग्रेट डॉक्टर्स ऑन द शो विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड एंड फॉर लिसनिंग टू आर प्रोग्राम्स। इसी तरह से और भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा यह कार्यक्रम सक्सेसफुल है। ये हमें लिखकर भेजा है श्याम मित्तल जी ने रोहिणी दिल्ली से, कि क्या वेदर सच चाइल्ड शुड बी केप्ट एट होम और सोसाइटी और शुड ही बी केप्ट सेपरेटली इन अ डिफरेंट ग्रुप, प्लीज डिस्कस।
0: एब्सोल्युटली होम विद एवरीबॉडी। एक बहुत दुख का विषय है कि आपने देखा है कि लोगों की शादियां, बर्थडे पार्टीज और मूवी थिएटर्स में कितने आपको न्यूरोडाइवर्स लोग मिलेंगे,
1: जी
0: तो वो इसलिए नहीं बाहर निकल पाते हैं, उनका भी दिल करता है बाहर घूमने का, दे आर हैप्पी उनका, लेकिन हैप्पीनेस शेयर करने का अलग तरीका है। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी में कोई बाहर आ जाता है व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर ऑब्वियसली ऑटिज्म वालों में नहीं है, पर किसी भी और भी, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सब अजीब वे से देखा जाता है, बिकॉज वी हैव स्टिग्मा अटैच्ड, बिकॉज लोग इतनी बुरी नज़र से देखते हैं, ह्यूमैनिज्म नहीं है। हमारे को ये समझना है कि हर इंसान, हर जीव आत्मा का इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, तो उसमें एक्सेप्ट करना जब तक सोच। और दूसरी बात है, हम लोग सारे जहां में बोलते रहते हैं एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है बच्चे को। ये नहीं है कि दो बच्चे अगर है, एक में ऑटिज्म है एक में नहीं है, तो यू फीलिंग यू कीप ब्लेमिंग द चाइल्ड कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एट होम, देन यू नो इन द इमीडिएट फैमिली, फिर स्कूल की बात आती है, फिर सोसाइटी की बात आती है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। और एक और

0: पॉइंट आता है कि क्योंकि इसके अंदर आप इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कई बार सस्पेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने का बच्चा जो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, लेकिन आपके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपका बच्चा अगर 12 महीने तक टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल बस बड़बड़ाना भी नहीं शुरू किया, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा है मीनिंगफुल, 2 साल पे मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, और अगर कोई भी शब्दावली आके चली गई है तो, और कई बार ये जैसे बताया कि आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्या कई बार होता है ग्रैंड पेरेंट्स, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि माँ बाप भी रिजर्व थे, माँ बाप भी देर से बोले थे, तो वो ठीक हो जाएगा, आई
1: जी
0: मीन दैट
1: जी
0: ठीक हो जाएगा, यू मिस द बस, बिकॉज
1: जी
0: क्या है,
1: एटीट्यूड की
0: हाँ
1: प्रॉब्लम
0: हाँ
1: जी
0: बिकॉज ये जो कई बार रिपीटेटिव जो बिहेवियर आ रहे हैं इनके, उसको स्टीरियोटिपीज कहते हैं, फिक्स इंटरेस्ट है, ये सब आगे डेवलप कर रहे हैं अगर
1: ओके
0: हम पहले पकड़ लें। और क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी है, कई देखा गया अनुसंधान में कि बच्चे के जो ब्रेन की कनेक्टिविटीज में अबनॉर्मलिटीज और डिफरेंट होने लगता है, तो अगर हम एक्ट करना शुरू कर दें पहले, तो फिर वो बनेंगे नहीं ना अबनॉर्मलिटीज,
1: जी
0: तो आउट यू आर इफेक्टिंग अर्ली इंटरवेंशन से आपका आउटकम बेटर होगा। जी
1: ये आप
0: जी
1: बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे एक मिरर न्यूरॉन्स है, इस पे बड़ी रिसर्च हुई है कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे इमिटेशन नहीं कर पाते हैं, ना तो साउंड का कर पाते हैं ना किसी पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ का कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे से अगर पेरेंट्स स्माइल करते हैं तो बच्चा जो है रेसिप्रिकेशन में स्माइल करके दिखाता है, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सही तरीके से इमिटेट कर पाएँ साउंड को या बिहेवियर को। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि 5 साल में क्या होते हैं कि ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, जो मिरर मिरर न्यूरॉन जो एक्टिवेट नहीं है सही ढंग से। तो अगर हम उनको स्टिमुलेशंस देते हैं, अगर स्टिमुलेशंस के थ्रू हम प्रॉपर उनसे अगर बातचीत करते हैं या एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस उनको बच्चों को देते हैं, तो उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है बढ़ सकती है, मिरर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते
0: तो
1: हैं।
0: बात वही है कि इसको कितनी जल्दी पहचाना जाए,
1: जी
0: और उसके लिए पेरेंट्स के
1: देखिए,
0: साथ रहना
1: इसमें
0: उन्हें
1: मैं
0: बहुत
1: कहना
0: जरूरी।
1: चाहूँगा कि
0: हाँ
1: जो 1.5 से 3 साल जैसे ऑनसेट होता है जो ऑटिज़म का, वो 1.5 से 3 साल में आइडियली हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि माता पिता को ये एक्सेप्ट करना, और अभी तो जैसा कहा कि इसके पिताजी भी बहुत लेट
0: ठीक हो
1: बोले थे,
0: जाएगा, ठीक
1: ठीक
0: हो
1: हो
0: जाएगा, इट्स
1: जाएगा।
0: अ एक्सेप्टेंस बाद में आएगी, अभी ये है
1: हाँ,
0: कि हम रेड फ्लैग ही नहीं दे रहे,
1: रेड
0: मतलब
1: फ्लैग्स या
0: एक्सेप्टेंस बाद में आएगी, पहले तो आ रहा है ना कि हम आ ही नहीं रहे हैं,
1: आई
0: फॉरवर्ड
1: नहीं
0: की
1: रही।
0: प्रॉब्लम
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट की प्रॉब्लम है।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही,
1: जो
0: बिल्कुल
1: डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, मतलब कि कैसे जो जैसे कि देखा गया कि 6 मंथ तक जो है स्माइल्स कर लेना चाहिए बच्चे को, और 12 मंथ तक उसमें जो बैबलिंग होना चाहिए जिसे हम बेबी टॉक कहते हैं वो सारा आ जाना चाहिए। एंड एक होता है रेस्पॉन्स टू नेम, 12 मंथ्स तक उसमें ये भी आ जाना चाहिए कि अगर बच्चे का हम नाम पुकारते हैं तो वो अपने नाम से जो है रेस्पॉन्ड करे,
0: एक्चुअली
1: पर
0: एक्चुअली
1: ऐसा
0: नहीं,
1: हो नहीं
0: एक्चुअली
1: पाता
0: योगेश जी मैं
1: है।
0: ये सोच रही हूँ कि अगर वो लोग ये याद ना रखे कुछ भी, पर ये समझे कि आगे पीछे जो बाकी बच्चे हैं
1: जी
0: उसी के एज के हिसाब से,
1: जी
0: उससे थोड़ा सा इनको पीछे लग रहा है या कुछ चिंता लग रहा
1: फोकस
0: है, तो
1: जी
0: बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के पास जो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, नहीं तो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को
1: जी
0: दिखाएं, ताकि वो देख ले कि सब ठीक ठाक है
1: जी
0: या कोई चिंता का विषय है।
1: जी
0: ये लगभग ऐसा ही एक मैसेज है जिसका जवाब आप लोग अभी दे रहे हैं, तो मैं उनका पढ़ देती हूँ मैसेज। उन्होंने लिखा है, डज ऑटिज्म अफेक्ट चाइल्ड स्पीच व्हेन हिज पेरेंट्स कैन टॉक नॉर्मल, द चाइल्ड हैज अ स्टटरिंग वॉइस, ही कांट स्पीक फ्लुएंटली, ही इज 8 ईयर्स ओल्ड। नहीं
1: तो
0: वो थोड़ा डिफरेंट है
1: अच्छा, ये
0: सवाल,
1: डिफरेंट
0: डिफरेंट
1: है,
0: है
1: तो चलिए
0: सवाल।
1: इसका
0: हाँ
1: बताइए।
0: इसमें यह है कि इसमें जो बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है, तो वो लैंग्वेज डिले हो रहा है, ये
1: अच्छा
0: बात कर रहे हैं कि जो तुतला के बोल रहा है या उसकी क्लियर स्पीच नहीं है, वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम
1: अच्छा
0: है, वो स्पीच एंड लैंग्वेज में आती है, वो ऑटिज्म में नहीं है,
1: तो
0: तो
1: इनको भी
0: उसको
1: दिखाना
0: इनको भी
1: चाहिए।
0: दिखाना डेफिनेटली चाहिए। हर चीज का एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का उसका एक सोल्यूशन होता है, बट आपको एक प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हो जाएगा, बिकॉज हम एक अंदर से है कि हाँ सब ठीक है, इट विल ओके हो
1: जी
0: जाएगा।
1: जी और जैसा आपने कहा, घर के जो बुजुर्ग होते हैं कई बार वो भी कहते हैं, नहीं ऐसा तो होता है, हमारे टाइम भी होता था, पर सब ठीक ही हो गया। तो आई थिंक
0: अनरिजर्व है, स्कूल में जाएगा तो घुल मिल
1: जी
0: जाएगा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: दीस थिंग्स आर
1: जी
0: नॉट टू
1: आप
0: बी।
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे? ऐसे ही सिम्टम्स, कई सिम्टम्स हैं जैसे हैंड फ्लैपिंग्स हैं और रॉकिंग है और क्लाइंबिंग है, एक ही जगह पे जो है क्लाइंब करता रहना, जंपिंग करते रहना और क्लैपिंग्स लगातार बजाते रहना।
0: मैं एग्जाम्पल बताऊँ,
1: हाँ
0: हमारे पास एक, अभी हम लोग जनरली पहले कुछ साल पहले, बिकॉज रनिंग एन ऑटिज्म क्लिनिक फॉर लास्ट 26-27 ईयर्स, तो पहले तो हमारे 3.5-4 साल पे डायग्नोस हो रहे थे, अभी हमारे 1.5-2 साल में डायग्नोस हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एक डॉक्टर मदर आए, वो

0: उसके भी ये जो स्टीरियोटिपीज की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा हाथ हिलाए जा रहे थे विदाउट एनी रीजन.
1: जी
0: स्टीरियोटिपीज आर बेसिकली मूवमेंट्स विच आर नॉट एक्सप्लेन. कभी हाथ को हिला रहा है या जंप कर रहा है एक जगह, या वो पंजों पे चल रहा है, ये नहीं कि उसके पैर में प्रॉब्लम है, पंजों पे ही चल रहा है. तो वो उन्होंने आके दिखाया एंड एक्चुअली ऑटिस्टिक फीचर्स निकले. दैट मीन्स अगर हमें कुछ भी लग रहा है कि हटके है तो
1: जी
0: प्लीज कंसल्ट.
2: दिखाना चाहिए बिल्कुल. और ये कार्यक्रम हम आज इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारे श्रोता इसको समझ पाए कि ये रुकने की सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे डॉक्टर के पास.
0: और प्रेवलेंस
1: की
0: बात
1: मैडम, एक टेक्निकल बात और आती है कि इसमें ये जो बिहेवियर हमने कहा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, ये सारा स्टीमिंग में आता है. अब हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कई टिक्स मूवमेंट्स भी होते हैं जैसे टर्निंग द हेड और नेल बाइटिंग या लिप बाइटिंग. तो इसमें ये देखना है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बड़े इन्वॉलेंट्री होते हैं और ये टॉरेट सिंड्रोम से जुड़े होते हैं.
0: आई थिंक वो डॉक्टर को हम ये इनको छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर को पता लगाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन बताएगा वो.
1: मैं इसलिए श्रोताओं को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये टिक्स मूवमेंट्स हैं तो ये स्टिमरिंग और टिक्स मूवमेंट्स में भी बड़ा डिफरेंस है.
2: हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे पूछ लेते हैं इनकी समस्या. हेलो,
3: नमस्ते मैम.
2: जी जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में. जी जी बताएं.
3: मेरा बच्चा है 4 साल का है, वो ना बोलता है ना चलता ना खाना पीना खाता कुछ भी ना है का.
2: अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही है बता दीजिए.
3: अलीपुर से बोल रहा हूँ.
2: जी जी, अच्छा, जी.
0: अभी उसका 4 साल का है ना, तो नॉर्मल पैदा हुआ था या कोई ऑपरेशन से हुआ था?
3: नॉर्मल हुआ था.
0: हाँ, तो एकदम से रोया था?
3: हाँ रोया था का.
0: घर में पैदा हुआ था अस्पताल में?
3: घर पे ही.
0: अच्छा, अभी उसने चलना शुरू किया, बैठना शुरू किया?
3: बैठो ना करता ना बोलता.
0: अच्छा, बैठना बोलता नहीं करता ना. फिर बेटा ऐसा है, आपको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. अगर क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं ना, उसमें जनरली जो चलने वलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथ पैर सही चलाते हैं, उसमें जो हमने बताया था ना सामाजिक अभाव और कम्युनिकेशन, जो संचार की प्रॉब्लम है, जो आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको सेरेब्रल पॉल्सी हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकार से आपके बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुआ होता है. क्यों? अगर बच्चा देर से रोया है जन्म पे, या कभी बिस्तर से भी गिर गया है, या कहीं छत से गिर गया है, या कभी दिमाग में इन्फेक्शन हुआ है. नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, कारण बता रही हूँ कॉमन. पर कई बार कोई चीजें होती हैं हमें पता नहीं लगती हैं, और कई बार अगर ये सब नहीं होती तो कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं, मैं ये कह रही हूँ. तो इसलिए अगर बच्चे के डॉक्टर को बताएंगे ना, तो हो सकता है कुछ अनुवांशिक कारण हो या कुछ ब्रेन में मैलफॉर्मेशन हो, तो बच्चा देख के ही पता चलेगा और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे. पर आप दिखाइए जरूर अपने घर के आसपास एक बच्चों के डॉक्टर को. अगर आपको यहाँ दिखाना है तो वो हेल्पलाइन नंबर में आप अपना डिटेल देख के आपको अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हम लोग देख के ताकि गाइड करेंगे. क्योंकि उसकी देखो हमें क्या है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पता करना है कि क्या है, और उसके लिए इसकी जिंदगी में जो उसका मैक्सिमम क्षमता है, पोटेंशियल है, उस तक लेके जाना है. तो जो भी प्रॉब्लम.
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए. और ये एक मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्किप कर जाए ऑटिज्म, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत एविडेंट होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा स्किप हो जाता है. एंड वॉट वन शुड टेक केयर वंस डायग्नोस इट इज डायग्नोस्ड इन अ टीनेज्ड चाइल्ड.
0: ओके, एक्चुअली अभी जो प्रेवलेंस यूएस का लास्ट ईयर का डेटा का है ना, मार्च 2024 का 1 in 36 है, तो काफ़ी कॉमन है. और WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 in 100 को उनको लगता है कि ऑटिज्म है, तो दैट इज प्रेवलेंस के हिसाब से. दूसरा यह है कि आप कह रहे हो आपको लग रहा है कि लक्षण, ये लक्षण तब है जब कोई आपको एक्सपर्ट देख रहा है और उसने ये सारी चीज़ें देखी. हर बच्चे में हर चीज़ नहीं होती और हर बच्चे में हर चीज़ की सिवेरिटी नहीं होती. और ऑटिज्म सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऑटिज्म की जो है, जो US वगैरह का विदेशों का जो डेटा है उसमें कहते हैं कि 40% बच्चों में मानसिक समझ कम होती है. परंतु हमारे हिंदुस्तान में बच्चों में, जो हमने बच्चे का अभी हमने 1874 बच्चों का एनालाइज किया डेटा हमारे, उसमें हमने देखा कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज थी, मतलब या तो चंचलता या दौरे पड़ने या इत्यादि बहुत सारी. दैट मीन्स पूरा बच्चे को देखना पड़ेगा. और हमारे 70% बच्चों के दिमाग में समझ थोड़ी कम थी. तो इसीलिए क्या होता है, जिनकी समझ ठीक होती है तो उनमें चंचलता होती है, तो वो ADHD करके निकालते हैं, वो चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो देखते नहीं है, तो दे गेट मिस्ड. सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दूसरा, अगर एक बच्चे को किशोर अवस्था में है प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे नॉर्मली एडोलेसेंट में किशोर अवस्था में क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे, और किसी भी किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा न्यूरोडाइवर्स है तो कोई

0: बच्चे, बाकी आम बच्चों में भी कितनी बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा हो जाता है, माँ बाप की सुनता नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। इन बच्चों में ऑटिज्म में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है फिजिकली, वो हॉर्मोन्स आ रहे हैं, मेल हॉर्मोन्स आ रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो होता है वो जनरली हर एक इंसान में होता है, पर वो हमेशा प्राइवेट होता है और कोई बात नहीं होती, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो मिस हो जाता है, पता नहीं चलता। पर इनके अंदर ये इनहिबिशन नहीं रहता कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, तो इनको वो सेल्फ स्टिमुलेटरी पब्लिक के लिए भी हो सकता है। इन दैट इज हाउ दे हैव टू बी टोल्ड कि वो प्राइवेट उसको के अगर पेरेंट्स को दिखाना होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमने खुद बनाए हुए प्रिंट आउट्स की कैसे बॉडी ग्रो हो रही है और कैसे, वो फोटो से बताना है और फोटो से वो बच्चे को समझाते हैं पेरेंट्स में से फादर या मदर जो भी क्लोज है कि बताओ जी आपकी बॉडी बढ़ रही है, हेयर आ रहे हैं इधर, ये सब, तो दैट इज नॉर्मल, सो दे बिकम कंफर्टेबल। तो फोटो से उनको समझाना है, और अगर इनका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है देन दे हैव टू से कि भैया माँ बाप के सामने तो कर लो, बहन के सामने नहीं करना और किसी के सामने,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: ये है कि अगर वो कोई कर रहे हैं तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरे चीज में, उसी समय नो नो नहीं करना है, फिर उनका रिटेलिएशन होता है।
1: जी जी
0: तो ये
1: बहुत
0: सारी
1: तरह
0: चीज,
1: से उनको समझना बहुत
0: हाँ,
1: जरूरी
0: और
1: होता
0: इनकी
1: है।
0: साइको सोशल चीजें पूरी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो बाकियों में इतनी सारी बिहेवियर इश्यू आते हैं तो इसमें और आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर इनर फीलिंग्स एज वेल।
1: जी, हमारे एक और लिसनर लाइन पर हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
1: जी, नमस्कार।
2: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, बताएं प्रश्न
2: और
1: करें।
2: मेरा पूछना है कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के मरीज हैं, क्या एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, यानी उनकी उम्र लंबी नहीं होती, क्या ये मिथक है?
0: ऑलरेडी चर्चा का विषय नहीं, पर आपको बता देते हैं, वो एक कोई भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि कई सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों में, कुछ बच्चों में ऑटिज्म भी हो सकता है, तो उसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जो डेवलपिंग ब्रेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है उसके पेट में के टाइम है, डिलीवरी के आसपास के टाइम है, या फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में, या तो देर से रोया है बच्चा, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, या कोई चोट लगी है, जैसे मेनिनजाइटिस होता है, मेनिंगोइंसेफलाइटिस होता है, कोई स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी चीज ब्रेन में डैमेज हुई है इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, डैमेज एक टाइम का ब्रेन को, लेकिन वो डेवलपिंग ब्रेन है तो उसके रेपरकशंस आगे होते हैं, तो उनके हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ढीले हो जाते हैं, या मोस्टली लोगों में बाद में टाइट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें अलग हैं जो
1: जी,
0: सेरेब्रल पॉलिसी में होते
1: वो
0: हैं।
1: हम कभी फिर से आपके
0: श्योर,
1: साथ बात करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर, और समय कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। ये मैसेज हमें किया है प्रीति ने चंडीगढ़ से, और वो लिख रही हैं, आई एम अ स्कूल काउंसलर, यू हैव टॉक्ड अबाउट सम स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द एम्स वेबसाइट, कैन यू टेल अबाउट दैट, एंड कैन स्कूल काउंसलर्स यूज द सेम फॉर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन? एक तो ये जानना चाहती हैं। दूसरा इनका एक प्रश्न और है कि आजकल बहुत इनफर्टिलिटी है और पीपल आर गेटिंग IVF डन, तो क्या ये भी रीजन हो सकता है इंक्रीज इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन?
0: फर्स्ट थिंग, जो हमने, मैंने बोला स्क्रीनिंग वाले बनाए, मैंने साथ में ही बोला था उसकी ऐप अभी बनाई नहीं है, ऐप बना रहे हैं। आपको अगर चाहिए वो टूल, वो हम आपको दे देंगे, आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरा नाम है जो है shefaligulati@gmail.com है, FF लगाइएगा, तो वो मैं आपको मेल कर देंगे, पर हम ऐप बना रहे हैं, वो हर एक को बनाने के लिए मनी भी अरेंज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग वॉज, आपने जो IVF, दिट हैज बीन शोन वर्ल्ड वाइड दैट देर इज द प्रेवलेंस ऑफ मैलफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट इन IVF में ज्यादा है, और ये है स्पेशली इक्सी में और ज्यादा है। अगर IVF कराते हैं वो एटमोसफियर इज नॉट सेम एज द वूम, सो इट हैज बीन शोन कि अगर आप प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बलिस्मत IVF है, तो मैलफॉर्मेशन होना, बनावट दिमाग में, बनावट में नुक्स, और जो न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, और स्पेशली जब वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, जो इक्सी करते हैं उसमें और भी ज्यादा
1: तो
0: होती
1: रीजन
0: है,
1: हो
0: सकता
1: सकता
0: है,
1: है।
0: डेफिनेटली।
1: यशपाल जी हमसे पूछ रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार आप सब डॉक्टर्स को, और थैंक्स फॉर अनकॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माई क्वेश्चन इज, कैन प्रिजर्विंग कॉर्ड ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म, एंड वेदर इट इज रियली यूजफुल टू प्रिजर्व स्टेम सेल्स ड्यूरिंग बर्थ?
0: CAK बहुत बड़ा एक पैंडोरस बॉक्स आपने खोल दिया। एक तो पर स्टेम सेल आइस ऑफ टुडे ऑटिज्म में उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज। हम भी अनुसंधान कर रहे हैं, और इस वक्त भी हमारी एक रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल का भी एक पार्ट, एक्सोसोम्स हटा के हम ऑटिज्म के माइस मॉडल में स्टडी कर रहे हैं। तो अब दूसरा कि स्टेम सेल को अगर हम प्रिजर्व कर दें, टेक्निकली स्पीकिंग यू नो यू कैन डू दैट, पर वो जब है कि कोई अगर और प्रॉब्लम हो जो जेनेटिक ना हो, क्योंकि अगर कोई ऑटिज्म में तो आपको बताया कुछ जेनेटिक अनुवांशिक है, कुछ एनवायरमेंटल है, कुछ एपिजेनेटिक है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी नहीं है,
1: नहीं
0: पर आप कह रहे हो कि वैसे इस प्रिजर्व करें कि नहीं, वो भी एक बड़ा डिबेट है, पर पॉइंट इज कि अगर आप कर रहे हो तो कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में हुई तो उसमें तो काम नहीं आया।

0: क्योंकि वो स्टेम सेल में भी तो वो सेम ही बीमारी है. अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो पोटेंशियली फ्यूचर में आ सकता है, पर इट इज नॉट वेरी क्लियर फॉर मी टू रिकमेंड और
1: ओके,
0: नॉट
1: गॉट इट.
0: रिकमेंड.
1: एक बात आपने डॉक्टर शिफाली बीच में बोली थी कि इसमें सिवियरिटी भी होती है, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लें. सिवियरिटी क्या है इसमें अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं? योगेश आप बताएं.
2: हाँ, देखिए, डिग्री ऑफ सीवियरिटी के आधार पे इसे तीन भागों में बांटा गया है. हम कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड में क्या हो रहा है कि आप में कोई वर्बल स्किल्स इस बच्चे में नहीं होता. माइल्ड में जो है बहुत कम जो है वर्बल स्किल्स जो है होता है. और अगर हम सीवियर्स की बात करें तो यहाँ बिल्कुल वर्बल स्किल्स नहीं है. इस तरीके से हम एपिलेप्सी की बात करें तो जो सीवियर्स में जो है एपिलेप्सी के सिम्टम ज़्यादा कॉमन रहते हैं, और जो मॉडरेट में थोड़ी कम है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से देखी गई है. और एक होता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर. जो सीवियर्स ऑटिज़म होता है उसमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत होता है, जिसमें हेड बैंगिंग है और आपका रिस्ट बाइटिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं. और मॉडरेट में थोड़ा कम होता है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होता है. तो इस तरीके से हम अगर सिम्टम्स के हिसाब से देखे जाए और डिग्री ऑफ सिवियरिटी के हिसाब से देखे जाए, तो सब आपने देखा कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया.
1: जी जी बिल्कुल. और एक ये प्रश्न और आया है हमारे पास. पंकज शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, जगह इन्होंने नहीं लिखी है. इन्होंने लिखा है कि मेरा लड़का बहुत एग्रेसिव है, उसको अगर डांटते हैं तो वो वापस मारता है और प्रॉपर बोल भी नहीं पाता, शब्द नहीं बोलता. प्लीज बताएं क्या करें, क्योंकि वो 6 साल का है.
0: इट इज़ वेरी
1: जी
0: इम्पॉर्टेंट कि आप दिखाएंगे. एक आपको पूरी टीम देखनी पड़ेगी, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह. एक इम्पॉर्टेंस हमें देखना है कि हम ये देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव है. वो इसलिए नहीं है कि आके उठा के हम दवाइयाँ शुरू कर देंगे. हमें देखना है, एनालाइज करके डिटेल में देखे कि क्या ट्रिगर था, क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से वो हुआ है. तो वो देखते नहीं है पेरेंट्स. तो अब हमें ट्रिगर को हटाना है, ना कि उसके वो बिहेवियर को. दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन. और हमें ये भी समझना है कि हर वो दिखाएंगे तो उनका जब बच्चे का टेस्ट होता है उसका क्या डेवलपमेंट की क्षमता है, IQ कितना है, उसके हिसाब से ही हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है. जैसे हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट होते हैं और सिवियर होते हैं, साथ में हाई फंक्शनिंग होते हैं, जिनका भी IQ 70 से ऊपर होता है उनको हम हाई फंक्शनिंग बोलते हैं. और कुछ एक सेवेंट होते हैं में एक्सेप्शनल क्वालिटीज होते हैं. आपको अगर अपना आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दो तो वो बच्चा 1 सेकंड में आपको डे ऑफ बर्थ बता देगा.
1: अच्छा.
0: 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट नंबर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपना मोबाइल फोन खोल देते हैं, वो 6 डिजिट इंटू 6 डिजिट मल्टीप्लाई 1 सेकंड में कर देंगे, स्क्वायर रूट कितनी बार कर देंगे. तो मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं. एंड ऑल्सो टू रिमेंबर दैट पीपल लाइक आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, न्यूटन और ये यू नो ऑल ऑफ देम एंड मोजार्ट, इन सबको ऑटिज्म था तो फिर भी वो कर सके. तो हटके जो भी है लेकिन वो इतना कुछ डेवलप कर चुके हैं. तो सबको हमें एक्सेप्ट करना है. और आई नो टाइम इज रनिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. आई फील वेरी सैड फॉर वन पेशेंट फ्रॉम हरियाणा का एक विलेज में. उसके यहाँ स्कूल में इतनी बुलिंग होती है, उस बच्चे के कपड़े उतार के उसको गंदे नाली में घिसा देते हैं, ऑटिज्म के बच्चे को. तो मेरे को इतना दुख आया कि आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो क्या है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी लिसनिंग शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरस्टैंड, टू स्कूल टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड. उन बच्चों को फिर बाद में ही सिखाएंगे ना स्कूल वाले को. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल.
1: बिल्कुल, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. एंड बिल्कुल यहां पर मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर शेफाली की जो मनस्थिति है और वो जिस तरह से बात कर रही हैं. एक डॉक्टर इस तरह से एक इमोशंस के साथ जुड़कर अपने श्रोताओं से बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेडिकेटेड वो हैं अपने काम के प्रति. ऑटिज्म पर वो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शेफाली गुलाटी. और उन्होंने यहाँ अपना मेल ID भी पर्सनल बता दिया है कि आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर वर्क ऑन ऑटिज्म. और भी बात करना चाह रही हूँ मैं, लेकिन समय हमें इजाजत बहुत कम देगा. मैं ये जरूर चाहूंगी कि चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आप दोनों के ले लूं. मैं बस यहां पर एक बार रिपीट करना चाहती हूं, वेबसाइट बताना चाहती हूं, www.pedneuroaims, www.paidneuroaims.org, जो मैडम ने बताई. साथ ही साथ एक नंबर मैडम ने बताया, 1-800-111-7776. तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन इस संबंध में मिल सकती है. तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है, बस उतना ही बताएं हमारे
0: 10 seconds. माई पॉजिटिव ऑटिस्टिक आइडेंटिटी, दैट इज जिसको भी ऑटिज्म है उसमें जो उसकी पॉजिटिविटीज है हमें उसको देख के निखारना.

0: हैं एंड वी आर ऑल न्यूरोडाइवर्स. और हम जो बात करते हैं कि सब है, मतलब न्यूरोडाइवर्स हैं, सबका इक्वल राइट है, तो हमें साथ में इक्विटी की बात करनी है, जिसके अंदर जो चीज़ की कमी है सपोर्ट थोड़ा देना है. एक दीवार है, अगर छोटे हाइट का बच्चा है तो उसको स्टूल थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, बलिस्मत जो लंबे हाइट का, तो इक्विटी की बात है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ.
1: बहुत अच्छी बात.
2: मैं तो कहूंगा कि ऑटिज्म के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. पहला तो होप है, आप हमेशा आशा रखिए कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप कॉन्स्टेंट जो और परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा. और मैं ये नहीं कहता ये मेंटल कंडीशंस है, कोई इसका मैं कहूँ कि कोई पूरा क्योर मिल जाएगा, पर हाँ वो इतना अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएगा कि ताकि आगे चल के वो थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन पाए. होप है और एक्सेप्टेंस है, पूरा एक्सेप्ट करिए उनको पूरी तरीके से. और तीसरी चीज़ है एंगेज, उनको 24 घंटे उनको प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में एंगेज रखिए, उनके साथ एम्पैथी रखिए और एक प्यार से उनसे अटैचमेंट रखिए. आप देखना प्यार में बहुत शक्ति होती है, अगर प्यार से उनके साथ एंगेज रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा. और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़बरदस्ती बच्चों को काउंसलिंग सेंटर में रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी. तो इस बात को ध्यान रखना है कि घर में बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको देना है ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रो कर पाए और आपके साथ जुड़ पाए.
1: बहुत बहुत पॉजिटिव बातें आज यहाँ दोनों डॉक्टर्स ने बोली हैं. और बिल्कुल ये कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है ज़रूर आप इससे फ़ायदा लेंगे, बहुत सारे श्रोता इससे फ़ायदा लेंगे, उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जिनको उस प्यार, उस केयर, उस हमदर्दी तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैडम मुझे टोकेंगी, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक आम नागरिक को जैसे सारी चीज़ें चाहिए वो देने की ज़रूरत है. तो आप ये प्यार हमको भी देते रहिए, हमारे इस चैनल को देते रहिए, FM रेनबो को सुनते रहिए, और खास तौर पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनते रहिए. तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर शेफाली गुलाटी, ऑटिज्म एक्सपर्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली, योगेश कुमार सीनियर साइकोलॉजिस्ट. आप दोनों यहां आए, ऑटिज्म के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी. बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर

0: क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तनवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूँगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा, निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का। अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है, मेरे सिलेक्शन के बाद हम

0: बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, क्योंकि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज़ होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं, और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? क्योंकि आर्मी का तो काम ही यही, आर्म फोर्सेस का, कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तब भी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका का फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया,

0: एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा ख़राब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
1: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
0: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
1: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा,
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था। एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
0: ले जा ले, ग्रिल लगा।
1: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी माताजी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूँगी।
1: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना?

उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज़ सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे, मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूँगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं।

0: और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुंध भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे। हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियाँ एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,

0: इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ, चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सकें।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स, आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान

0: होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉर्स वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुँचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा

0: कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स ऑल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता है।
0: क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है, कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है।

तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना मैम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है।

0: मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक उस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है।
1: जी
0: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: आज की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।
1: जी
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं, और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें। उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: महसूस नहीं कर सकते। तो नवी तरक्की विच यह साबित होया आ कि चीन विच बनिया विशाल जूनो डिटेक्टर न्यूट्रोनो दियां विशेषतावां नूं होर सही तरीके नाल माप रहा है। इस नाल जो पता लग सकता आ वह ये आ कि जिहड़ा साडा ब्रह्मंड आ वह किवें बनिया। उस तो बाद जिहड़े पदार्थ ने जिवें एंटी मैटर नालों वध वह क्यों ने ते तारियां दे अंदर जो है वह की हुंदा आ।
1: बिल्कुल ललित, ते हुण गल कर लैंदे आ कुछ दिलचस्प विज्ञानिक तथां बारे। कि दोस्तों तुहानू पता है कि जिहड़ी सूरज दी रोशनी आ उहनू धरती तक पहुँचण दे लई 8 मिनट ते 20 सैकेंड दा टाइम लगदा है। ते सानू असी सोचदे आ कई वारी कि सूरज इन्ना दूर है ते रोशनी फटाफट साडे तक किवें आ जांदी है, बट देखो सूरज इन्ना दूर है तां वी 8 मिनट ते 20 सैकेंड लगदे ने उस रोशनी नू साडी धरती तक पहुँचण दे लई। ते मनुखी दिमाग जिहड़ा है उहनू लगभग 86 अरब न्यूरो नाल बनाया गया है। मनुखी दिमाग विच 86 अरब न्यूरो हुंदे ने। ते जिहड़ा अंतरिक्ष विच आवाज़ फैलन जिहड़ी अंतरिक्ष विच आवाज़ है ना वह फैलदी नहीं है क्योंकि उत्थे हवा नहीं हुंदी। ते इस दे नाल ही धरती हर सैकेंड लगभग 30 किलोमीटर की रफ्तार दे नाल सूरज दे आले दुआले घूमती है।
0: ते बिल्कुल दोस्तों, बाकी जिहड़ियां होर खबरां ने जां होर जानकारी आ वो तुहानू दवांगे इस गीत तों बाद।

0: दोस्तों खगोल विज्ञानियों ने कई नवे बाहरी ग्रहों की पछाण की आ जो अपने तारियां दे रहन योग खेत्र विच ने। दोस्तों रहन योग खेत्र ओ हुंदा आ ओ दूरी जिथे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होवे ते ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होवे अते जड़ा तरल पानी आ ओ मौजूद रह सके। ते ए महत्वपूर्ण इसलिए आ क्योंकि धरती तो बाहर जीवन की खोज नू होर ज़्यादा तेज़ किया जाए तो भविख दियां वड्डियां दूरबीना इन ग्रहों का अध्ययन करनगियां।
1: बिल्कुल दोस्तों अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ते नवे प्रयोग होन जा रहे ने। ISS दे विज्ञानिका ने ISS दे विज्ञानिका ने दिल दियां बहुत बीमारियां नू कंट्रोल करन लई भौतिकी नाल जुड़े जिहड़े नवे महत्वपूर्ण प्रयोग ने ओह कीते ने। नासा दा कोल्ड ऑटम लैब जिहड़ा है उत्थे प्रयोग कीते गए ने ते अंतरिक्ष टैक्नोलॉजी नाल इह बहुत महत्वपूर्ण सांझ रखदे ने। ते अज दा जिहड़ा स्पेस फैक्टर है ना ओह इह है कि चंद्रमा ते जिहड़ा एक दिन है ओह लगभग 29.5 धरती दे दिनां दे बराबर हुंदा है।
0: ते दोस्तों उम्मीद करदे आ अज दा प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होवेगा
1: ते इस लई मैनू आरजे खुशी नू
0: ते मैनू आरजे ललित नू हुण दिओ इजाजत। नमस्कार।

एहसास दे नाल तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। ये सफ़र एक रेडियो शो नहीं, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं या फिर एक रेडियो शो नहीं, वैसे अपना ना सफ़र नू अपनी जिंदगी दे नाल भी जोड़ सकते हैं। कहते हैं जो मंजिल ते पहुँचना हो ना तो सफ़र बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, तो जो खूबसूरत सफ़र हो जो असं मंजिल ते पहुँच जाइए तो सफ़र सानू याद आता है। ये सिर्फ एक रेडियो शो नहीं है, सगो मुस्कुराहटां दा सफ़र है, उम्मीदां दी उड़ान है, ते हर उस इंसान लई एक सुनेहा है जो अपने सुपनियां नूं जिंदा रखना चाहुंदा है। दोस्तों, जिंदगी दी खूबसूरती ये नहीं कि इस विच मुश्किलां नहीं हुंदियां, खूबसूरती तां ये है कि मुश्किलां दे बावजूद भी असी मुस्कुराउणा नहीं छड्डदे। अज दे शाम दी शुरुआत कुछ लाइनां नाल असी करदे हां। जिंदगी हर रोज़ नवा पैगाम लियांदी है, कदे धुप बन के कदे शाम लियांदी है, जो हस के हर हाल नू कबूल कर लवे उस दे लई हर सवेर नवा अरमान लियांदी है। सो दोस्तों, देखो जी, असी ना हमेशा अपने रेडियो शो दे विच एक चीज़ जरूर तुहाडे नाल शेयर करदे हां, वह शेयर ये करदे हां कि सब तो वड्डा जिहड़ा शुक्र मनाउणा चाहीदा उदों जदों सवेरे साडी अख खुलदी है, शुक्र मनाउणा चाहीदा है कि शुक्र है, थैंक गॉड कि अख खुली एक दिन होर मिलिया। ना शिकवा कर ना गिला कर, हर पल दा स्वाद लिया कर, जो मिलिया है उदा शुकर कर, ते जो नहीं मिलिया उस लई मेहनत कर। हाते एक होर तानू गल दस दिए, हवावां रोक नहीं सकदियां उड़ाना नू, मुश्किलां तोड़ नहीं सकदियां इरादियां नू, जो हस के जीना सीख लैंदे ने ओ सलाम करदे ने जिंदगियां दा अदावां नू। क्या बात है, जिंदगी दियां इन्ना अदावां नू। दोस्तों, अज दी इस महफल विच असी गल्लां करांगे खुशियां दियां, उम्मीदां दियां, हौसलियां दियां, अते उन्हां लोकां दियां जो हर हालात विच कहिंदे ने जिंदगी जिंदाबाद, क्योंकि जिंदगी दा नाम ही चलदे रहना है। दोस्त, डिगना भी जिंदगी है, उठना भी जिंदगी है, हारना भी जिंदगी है, जितना भी जिंदगी है, रोना भी जिंदगी है, हसना भी जिंदगी है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਸਜਾ ਲਓ, ਲਓ ਯਾਰ ਮੁਸਕਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹੋ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

लो जी दोस्तों, गाने की शुरुआत हो गई बड़ी पॉजिटिव लई। बड़ा मजा आया गाना सुन के, क्या बात है। सो एफएम बैंड 102.7 मेगा हर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल तुसी सुन रहे हो। सो आपां रल मिल के यार, है ना, स्वाद उदो आंदा जदों आपां ना रल मिल के दिल दीआं गल्लां दिल तक करदे आं, ते जदों मिल के असीं कहिंदे आ ना लव यू जिंदगी, जिंदगी जिंदाबाद, तो फिर उदो स्वाद आता। ठीक है जी, फिर मैं देखो जी हर शो के ना एक तो नाल मैं वादा भी करता हूँ तो नाल ना आप एक रूल बनाया हुआ कि जो भी आप शो शुरू करना है ना तो या फिर जो भी आप गलबात भी करनी है तो यही रल मिल के कहना, तो 3 की काउंटिंग आप रल के कहेंगे सारे यार दिल से याद रखो तो सारे कहने आप, ठीक है, टेंशन नहीं लैनी किसी गल की। 3, 2 कहना की है, पहला ये तो सुन लो कहना है लव यू जिंदगी। ठीक है जी, फिर आप रल के कहने, ठीक है जी, 3, 2, 1 स्टार्ट। लव यू जिंदगी, क्या बात है यार, स्वाद ही आ जाता जो आप लव यू जिंदगी कहने ना। सो लव यू जिंदगी दे विच फिर इदा तो हो ही नहीं सकता कि असी तुहानू कहानियां ना सुनाइए, है ना। सो लव यू जिंदगी दे विच असी तुहानू कहानियां सुनाने आ बड़िया मज़ेदार शानदार जिथों सानू सिक्ख्या मिलती है। ठीक है, सो अज की जी स्पैशल कहानी है मैं तुम्हें सुना जा रहा, तो गौर न सुनियो क्योंकि तू सीखने बहुत कुछ मिलता है।

ही बन के रहेगी। उस दिन तो उन्हें एक नियम बना लिया, हर दिन कल नालो एक कदम अगे। ना उन्हें एक दिन विच पहाड़ चढ़िया, ना एक रात विच कामयाबी मिली, पर हर दिन एक किताब दा एक पन्ना, एक नवी सिख्या, एक नवी कोशिश। सालां बाद जदो वो कामयाब होया, लोकां ने पुछया, तू ये तू ही है, तू ये सब किवें कर लिया, ये संभव किवें होया, ये नामुमकिन है। उन्हें मुस्कुरा के कहा, मैं कदे कामयाबी दे पिछे भज्या ही नहीं चाचा, मैं हर रोज अपने आप नूं बेहतर बनाया, मैं हमेशा अपने आप नूं बेहतर बनाने दे पिछे ही भज्या, कामयाबी आप ही मेरे पिछे आ गई। सो दोस्तो, जिंदगी विच वड्डे बदलाव वड्डे फैसलियां नाल नहीं, सगो छोटियां आदतां नाल आउंदे ने। एक बीज नूं रुख बनन लई समां लगदा है, डिपेंड करदा है कि उस समय नूं तुसी खूबसूरत बनांदे हो कि अपने हिसाब नाल तुसी लेजी हो के अजीब जिहा बनांदे हो। सो एक बच्चे नूं तुरना सिखण लई डिगणा पैंदा है, अते एक इंसान नूं कामयाब बनन लई नाकामियां दा सामना करना पैंदा है। इसलिए जे अज तुहाडी जिंदगी विच कोई मुश्किल है तां याद रखो, मंजिल तक पहुंचण वाले लोग कदे हार नहीं मनदे, अते हार मनण वाले लोग कदे मंजिल तक नहीं पहुंचदे। अज एक छोटा कदम चुको, क्योंकि हो सकदा है वही छोटा कदम तुहाडी जिंदगी दी सब तो वड्डी उडान दी शुरुआत होवे। सो दोस्तो, सानूं हमेशा कदम चुकना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। मेरे ना पिता जी कहते होंगे ने, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। सो जिंदगी एक खेल है, कोई पास है कोई फेल है। तो महात्मा बुद्ध जी भी कहते होंगे ने कि मध्य में रहो। तो जो असी मध्य में रहते हैं ना, तो असी शरीर तो टेंशन तो सोचा तो उपर उठ के बर्ड आई व्यू के जिंदगी देखते हैं, एक शतरंज दे खेड वांगू, ते जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाती है। ते फिर असीं रल के हमेशा कहने हां, जिंदगी जिंदाबाद, लव यू जिंदगी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

जी दोस्तों, वेलकम बैक एफएम बैंड 102 7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। ते तुहाडा मेज़बान आरजी जोरावर सिंह इज हियर। सो तुहानू असी बड़ियां खूबसूरत कहानियां जड़ियां दस रहे हां। और देखो जी, जदों दिलों गल निकले ना तो उदों ही दिल तक जांदी है, जे दिमाग तो गल निकले ना फिर वो दिल तक नहीं जांदी। हाँ, दिमाग का यूज हुंदा है, करना चाहिदा है, पर दिमाग दे लए गए फैसले थोड़े जे टैक्निकल हो जाते। सियाने कहिंदे जदों भी फैसला लो ना, दिल ते दिमाग दोवां दी आपस च दोस्ती करा के फैसला लेना चाहिदा। फैसला बड़ा खूबसूरत हुंदा है और वाकई इहदे विच रियालिटी है। सो दोस्तो, ये कहानी जिहड़ी हुण मैं तुहानूं सुणाउण जा रहा ना, एक कहानी है बीजां दी, दो बीजां दी। एक छोटी जी कहानी है। एक बार दो बीज एको खेत विच पए सन। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार दो बीज एको खेत विच पए सन। दोवां कोल एको जिही मिट्टी सी, एको जिहा पानी सी, ते एको जिही धुप भी सी। पहले बीज ने कहा, मैं धरती नूं चीर के बाहर नहीं आऊँगा, की पता उपर की होए, जे तूफान आ गया, जे कोई मैनू कुचल गया, जे मैं कामयाब ना होया तां। वो डरदा रहा ते मिट्टी दे अंदर ही पिया रहा। दूजे बीज ने कहा, हाँ खतरा तां है, बल्कि खतरे बहुत ने, पर जे मैं बाहर नहीं निकलिया तो मैनू कदे पता ही नहीं लगना कि मैं की बन सकता। उन्हें अपनियां जड़ां मिट्टी विच फैलाईयां, हौली हौली उपर वध्या ते एक निक्का जिहा पौधा बन गया। दिन बीतते गए, बरसात आईयां, तूफान आए, धुप भी लगी, पर वह पौधा हौली हौली एक मजबूत दरख्त बन गया। उधर पहला बीज अजे भी मिट्टी के अंदर ही पिया सी, जिहड़ा पहले वाला बीज वह हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहा। उहदी आदत बन गई, उन्हें सुरक्षित रहना तो चुन लिया पर जीना नहीं सीख्या। दोस्तों, साडी जिंदगी भी इन्हों दो बीजा वर्गी है। कई बार असी नवा काम शुरू करन तो डरते हैं, नवी जिम्मेवारी लैन तो डरते हैं, अपने सुपनों के पिछे जान तो डरते हैं। असी सोचते हाँ जे मैं असफल हो गया तो, पर असल सवाल ये नहीं कि जे मैं हार गया।

इस कहानी का नाम असी रखांगे जी बाज ते मुर्गियां। बाज ते मुर्गियां। एक बार एक किसान नूं खेत विच बाज दा एक अंडा मिलिया। उन्हें वो अंडा मुर्गी दे अंडे नाल रख दिता। कुछ दिन बाद अंडे फुटे अते बाज दा बच्चा भी मुर्गियां दे चूचियां नाल वड्डा होण लग पिया। मुर्गियां वांग जमीन ते चुगदा सी, मुर्गियां वांग थोड़ा जिहा उड़दा सी, मुर्गियां वांग ही अपनी जिंदगी जी रहा सी। एक दिन उन्हें आसमान विच एक शानदार बाज नूं उड़दे देखिया। उन्हें मुर्गी नूं पुछिया, ये कौन है? मुर्गी ने कहा, ये बाज है, पंछियों का राजा। ये बहुत उच्चा उड़दा है, पर तू इस वांग नहीं बन सकता क्योंकि तू तो मुर्गी है। बाज के बच्चे ने यह गल मान ली। उन्हें कदे कोशिश

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: वेलकम बैक दोस्तों, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ते रेनबो चैनल ते तुसी अपना फेवरेट शो एंजॉय कर रहे हो, जिदा नाम है लव यू जिंदगी विद RJ जोरावर सिंह। सो RJ जोरावर सिंह तुहाडी खिदमत विच जिहड़ा हमेशा इत्थे तत्पर है, त्यार बर त्यार है। सो तुसी शो सुन रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। उम्मीद है कि तुसी इस शो नू इंजॉय करन दे नाल नाल सारियां जिहड़ियां कहानियां ने उन्हां तो तुसी कुछ ना कुछ सिख्या लैके अपनी जिंदगी दे विच इन्हां नू जरूर अपनाओगे। सो दोस्तों, इस तरीके नाल असीं तुहानू बड़ियां खूबसूरत कहानियां सुना रहे। ईवन दैन मैं खुद बड़ा इंजॉय कर रहा इन्हां कहानियां नू सुन सुन के, क्योंकि देखो वो चीज़ां सियाने कहिंदे सानू पढ़नियां चाहीदियां जिन्हां तो सानू कुछ सीखण नू मिले। सो आओ अगली कहानी आपां तुहानू सुनाउने आ। इस कहानी का नाम है पत्थर तोड़न वाला मजदूर। एक पिंड विच एक बजुर्ग मजदूर सी, वो हर रोज सड़क के किनारे वड़े वड़े पत्थर तोड़ता सी। एक दिन एक नौजवान ने उन्हें पूछा, बाबा जी तुसी ये एको पत्थर उत्ते 100-100 बार थोड़ा मारते हो, कि तुहानू नहीं लगता कि तुहाडी मेहनत व्यर्थ ही जा रही? अगर बजुर्गां ने मुस्कुरा के कहा, पुत्र वो जदों मैं पहली बार पत्थर ते सट मारी, जदों मैं पहला पत्थर दे उत्ते वार करदा हां ना, तां पत्थर नहीं टुटदा, दूजा वार करदा हां तां वी नहीं टुटदा, दसवां वीवां पंजावां वार भी उन्नू नहीं तोड़ सकदा, पर जदों 100वां वार पैंदा है ना उस पत्थर नू, तां लोग कहिंदे ने इस एक वार ने पत्थर तोड़ दिता। असल विच पत्थर 100वें वार नाल नहीं टुटदा, वो पहले तो लैके 99 वार तक दी हर कोशिश नाल टुटदा है। सो दोस्तों, असीं भी जिंदगी विच अक्सर यही गलती करते हैं, जदों

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने पर मननु तैयारी नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हूं लगा ही दिना हाँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: सो वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल दे अपना तुसी फेवरेट शो सुन रहे हो जिदा नाम है लव यू जिंदगी। यार सवाजा नहीं आया, नहीं आया, कठे होके बोलो, मैं ना इत्थों तक फील कर लैना तुसी नहीं बोले नाल। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। लव यू जिंदगी। तो अपनी जिंदगी नूं जिंदाबाद करन लई हमेशा सानू लव यू जिंदगी कहंदे रहना चाहीदा है। सो लव यू जिंदगी दे विच मैं बार बार एक चीज़ कहना होना, क्योंकि असी सियाणियां तो बहुत कुछ सीख्या कि लव यू जिंदगी ये शब्द जिहड़ा अपने आप दे विच ही बहुत बहुत बहुत पॉजिटिव है। सो हमेशा अपनी जिंदगी दे विच सानू ना पॉजिटिव जिहड़े लफ्ज़ ने, जिहड़े शब्द ने, जिहड़े वर्ड्स ने, उन्हां नूं बोलदे रहना चाहीदा है। सो इस करके साड़ी जिंदगी जिहड़ी आ खुश मिजाज बन जाती है, असी खुश रहने। सो आओ तुहानू अगली पॉजिटिव कहानी सुनाने। वैसे समा जिहड़ा ना इजाजत नहीं दे रहा, पर फिर भी वेखो साडे गुरिया नहीं जा रहा, फिर भी अं तुहानू स्टोरी सुना ही देनी है। सो एक कहानी जिहड़ी ना दौड़ाक दी आ। एक पिंड विच एक नौजवान दौड़ाक रहिंदा सी। उहदा सुपना सी कि एक दिन वह अपने राज की नुमाइंदगी करेगा। वह हर सवेर सूरज चढ़न तो पहला उठदा, कई किलोमीटर दौड़दा ते घंटियां अभ्यास करदा। देखो अभ्यास करना भी बड़ा जरूरी है, एवें तो नहीं कहिंदे कि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। सो आओ देखते अगे की होया। पिंड दे लोग अक्सर उहदा मजाक ही उड़ाउंदे हुंदे सी। वैसे ना मैं हिसाब लाया हर

मील पत्थर हासिल कीता है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा और सतिकार नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरमैन विजय किशोर ने आज पटियाला च कहा है कि पीड़ित महिला नूं न्याय दिलाउण लई कौमी महिला कमीशन दे दरवाजे हमेशा खुले ने। केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र जलंधर वालों मानसा जिले विच नरमे दी फसल विच कीड़ियां आते बीमारियां दी मौजूदा स्थिति दा मुलांकन करन लई एक सांझा खेतरी सर्वेखण कीता गया। पंजाब राज सफाई कर्मचारी कमीशन दे चेयरमैन चंदर गरेवाल ने जलंधर पछमी समेत शहर दियां वक-वक थावां ते सफाई ते सीवरेज व्यवस्था दा जायजा लिया। महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट वालों कमीशन हासिल करन वाले होनहार कैडेट्स अते नेशनल डिफेंस अकैडमी तो ग्रेजुएट हुए कैडेट्स नू वकारी अचीवर्स अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। FIH महिला नेशंस कप हॉकी विच भारत अज उरुग्वे नू 3-2 नाल हरा के सेमीफाइनल्स विच पहुंच गया है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ।

एक मैं और एक तू, ये जेड़ा गीत है ना, यह उना दी ही मूवी दा गीत है। तुसी ओ मूवी तो वेखी होएगी खेल खेल में, ओ मूवी जिदे विच जानकी दास जी ने फिल्म दे विच सेठ घनश्याम दा जेड़ा यादगार रोल है वह अदा किया। मैं ये भी कह रही थी तुहानू तो पहला कि साइकिलिंग दा उन्हां नू बहुत ज़्यादा शौक सी। हाँ, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स दे विच उन्होंने तिरंगा लहराया सी, क्योंकि वो ना गांधी जी नू बहुत ज़्यादा मनते सी। ते उस वेले जिहड़े ब्रिटिश अफसर सी वो इन्ने ज़्यादा गुस्सा हो गई सी कि उन्होंने उन्हों का मैडल भी कैंसल कर दिता। ते जानकी दास सिर्फ अदाकार ही नहीं सी, वह पहले इहो जे बंदे सी, इहो जे इंसान सी जिन्हां ने ओलंपिक्स दे विच भारत वल्लों साइकलिंग कीती सी। साइकलिंग का सफ़र सिर्फ जिहड़ा सिर्फ इत्थे ही नहीं खत्म हुंदा, साइकलिंग प्रति उन्हां दा इन्ना ज़्यादा प्यार सी कि 1946 दे विच साइकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी उन्होंने ही कीती सी। ताकि बाकी जिहड़े नौजवान ने ना वो भी ट्रेनिंग कर सकन ते नाल ही साइकलिंग सीख सकन ते अपने देश का नाम रोशन कर सकन। खेडा विच तां सफ़र उन्हां दा चल ही रहा सी, ते नाल ही 1942 दे विच शुरू होया उन्हां दा फिल्मी सफ़र। उस बारे सी गलबात करांगे, लेकिन पहला सुनांगे उन्हां दी ही मूवी दा खूबसूरत गीत, फिर देखांगे उन्हां दी शुरुआत जिहड़ी है साइकलिंग तो बाद फिल्मां दे विच किद्दां होई सी।

देखो जी, जिन्हें आना है वो तो आ ही जाएगा, थे जिन्हें जाना है वो भी चला जाएगा। फिलहाल मैं आ गई हूँ क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया से, उसी गल कर रहे हैं जानकी दास की। तो देखो उन्हों की जिंदगी दे विच भी ओपरचुनिटीज आई हैं, उन्हों की जिंदगी दे विच भी काफ़ी यहो जे उन्होंने मुकाम हासिल किए कि लोगों ने उन्हों की तारीफा की। लेकिन एक छोटी जी गल है कि एक दो फिल्मा मिलनिया ही बहुत ज़्यादा मुश्किल सी, लेकिन उन्होंने तो हज़ार तो भी ज़्यादा फिल्मा कीतियाँ। तुसी आप सोचो एक दो जॉब्स करना ते एक दो ओपरचुनिटीज सानू मिल जांदियां ने, असी सोचते हाँ यार किन्नी मुश्किल नाल सानू मिलियां ने, लेकिन उन्हां नू हज़ार तो भी ज़्यादा फिल्मां मिलियां ते सारियां

इधर ही मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हो मेरे पास।

ट्यून किया है 102.7 मेगाहर्ट्ज़। मैं तो हाड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम सुन रहे हो जी फिल्मी दुनिया। अजकल इदा लगता कि दिलजीत दोसांझ जिहड़ा है जिहड़े भी प्रोजेक्ट नू हाथ लाउंदा है ना वह डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। एक इहो जिही मूवी उहदी बहुत ज़्यादा चल रही है मैं वापस आऊँगा, यह मूवी का गीत नहीं है मैं वापस आऊँगा मूवी, जिहदे विच पंजाब दे बंटवारे बारे दस्या गया है। तो मूवी इमोशनल बहुत ज़्यादा है, हाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, रोण ते भी मजबूर कर देंदी है। लेकिन इस मूवी दे विच जिहड़ी एक्टिंग की गई है नसरुद्दीन शाह ने की है, तो दो रोल प्ले किए ने, तो साढ़े जिहड़े दिलजीत दोसांझ है उन्हां दी तां चर्चा हो ही रही है क्योंकि लोगों ने उन्हां नूं सिंगर तां पहला ही बहुत चंगा मनिया होया सी, ते हुण एक्टिंग भी उन्हां दी जबरदस्त मनी जा रही है क्योंकि वह पंजाबी फिल्मों दे विच भी बहुत सोहना काम करते ने ते हिंदी मूवीज़ दे विच भी बहुत सोहना काम करते ने। चलो जी मिलते हैं अगले गीत नू सुनते हैं, तो एक खूबसूरत जिहा गीत असीं सुनते हैं शान दी आवाज़ दे विच चांद सिफारिश जो

एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों साढ़े जिहड़े आर्टिस्ट ने बॉलीवुड होवे पॉलीवुड होवे ते ओ तां साढ़े दिल विच है ही क्योंकि वह सानू एंटरटेन करते ने साडे थॉट्स नू चेंज करते ने। ये फिल्मां हुंदियां इहो जिहियां ने, कई साढ़े एंटरटेनमेंट लई हुंदियां ने, कई साढ़े सोच नू बदलन लई हुंदियां ने ते कई इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां शायद सानू इन्ना ज़्यादा मोटीवेट कर दिंदियां ने कि साडी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो अज सब तो इंट्रस्टिंग ऑब्जरवेशन तो यह कि बॉलीवुड पॉलीवुड टच तो बिना ना अधूरा लगता है। म्यूजिक पंजाबी, डायलॉग्स पंजाबी, स्वैग वाले ते हिंदी डायलॉग्स, मतलब हर लैंग्वेज जी है ना वह लोगों नू इस तरीके दे नाल फील करवाती है कि ये तो साढ़े घर में ही सब कुछ चल रहा है ना, सारा कुछ साढ़े आले दुआले चल रहा है। असं इमेजिन करते हाँ, अपने आप नू इमेजिन करते हैं उस रोल के जरिए। तो यही साड़ी फिल्मी दुनिया है जिदे विच असी बहुत कुछ सीखते हाँ, मोटिवेट होंदे हाँ, इंजॉय करते हाँ। तो समा जिहड़ा इजाजत नहीं दे रहा इस प्रोग्राम नू अगे वधाउण लई, तां चलो जी चार कु लाइना गीत दी असी सुन लैंदे हाँ। जाते जाते सुनीए कि नहीं सुनीए चलो गल्लां बातां करनियां ने तां गल्लां बातां भी असी कर सकते हाँ, पर तीन चार लाइना तां असी म्यूजिक दियाँ सुन ही सकते हैं। अगला प्रोग्राम तुसी इंजॉय करोगे मस्ती जंक्शन, जिस प्रोग्राम दे विच बहुत सारिया गल्लां बातां होणगियां, तुहाडे दिल दियां गल्लां असी सुणांगे। हाँ चुटकले नहीं असी कह सकते, फनी फनी गल्लां होणगियां है ना। तो चलो जी म्यूजिक सुनो थोड़ा जिहा, सुनो कि नहीं कोई गल नहीं, असी मिलते हैं

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबक 8 बज गए ने ते वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस विच विवाटेक सम्मेलन नू संबोधन किया। श्री मोदी ने कई प्रमुख फ्रांसीसी लोकां दे नाल मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलके विच एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन करीब 2,400 करोड़ रुपए दे लाभ वंडनगे। पंजाब विच ए प्रोग्राम 6 थावां ते करवाया जा रहा है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एतवार नूं होण वाली नीट UG मुड़ परीक्षा दीआं तैयारियां दा मुलांकण कीता है। अज एक उच्च पदरी सिक्ख्या मीटिंग दी प्रधानगी कीती। केंद्र सरकार वल्लों इतिहासक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट नूं मुड़ जीवंत कीता गया। करीब 1,400 करोड़ रुपए नाल 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बनाई जाएगी। केंद्र सरकार माली साल 2026-27 विच 26,000 किलोमीटर तो वध देहाती सड़कां दा निर्माण करेगी, जिस लई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अते संबंधित देहाती संपर्क पहलकदमियां तहत निर्माण लई 18,900 करोड़ रुपए तो वध अलॉट कीते गए ने। मौजूदा माली साल विच

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है मस्ती जंक्शन ते साडे दोस्त साडे नाल जुड़ गए ने, तां करदे आं उहनां दे नाल गलबात। हैलो
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन जनाब गल कर रहे ने, कित्थों कर रहे ने?
1: आपां सोनीपत तों बोलदे, हरियाणा तों जी, प्रिंस वर्मा जी।
0: अच्छा जी, प्रिंस वर्मा जी बोल रहे हो, तां मैं पहले लिसनर तो हरियाणा दे विच हरियाणवी दे विच कुछ सुनिया सी, ते जेकर तुसी भी कोई डायलॉग मैनू हरियाणवी दे विच सुनाना चाहो तो सुना सकदे हो।
1: अरे सड़क ते मान लो कोई जा रहा है जी, गड्डी मार दिती विच जी, एदा जी सुनाने आ जी आपां जी हरियाणवी जी। अरे छोरे तने दिखता नहीं के इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा, तो तू इतनी बड़ी गाड़ी आख दे रहा, तो तू तने दिखता नहीं आगे, बुढ़ा बंदा आ रहा तू ना उसके अंदर ठोक दी गाड़ी है, कुछ देख के चल लिया कर भाई, आप बूटे बूट उतारते ना तो चश्मा लगा ले फिर।
0: सीरियसली बहुत सुनिए, एक और डायलॉग, एक और।
1: अरे कि जा रहा है? अरे मैं जा रहा था सैर करने, आजा तू भी गेल आजा मेरे। इबा आ रहा हूँ मैं, ठहर जा एक बार, मैं लौट रहा भाई, सोना लौट रहा कह रहे हैं, कोई ना उठ लो फिर आऊंगा तेरे घर, मैं एक बार भैंस ना चारा चूरा दे दू फिर उसके बाद आऊंगा तेरे दौरे।
0: बहुत सोनी बोली तुसी, बहुत सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसी प्रोग्राम दे विच आए।
1: थैंक यू जी।
0: तो अज तो मैं लगता है हरियाणे वाले साढ़े नाल जुड़ रहे हैं, लेकिन साढ़े हो जो दोस्त ने ना, मैं उन्हों का भी इंतजार कर रही हूँ, वो भी जो अपना फनी फनी टैलेंट है अपनी जी, मतलब कुछ भी फनी जड़ा है साढ़े नाल साझा कर सकते हैं, बट हाँ ओफेंसिव नहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि असी सारे इंजॉय कर बैठे हाँ इतने, तो ओफेंसिव कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलो जी अगला असी गीत सुनते हैं, तो फिर उस तो बाद अगले लिसनर की असी कॉल लवेंगे।

तुसी सिद्धे राह चलो, तुसी ठीक हो जाओ, है ना। तो चलो जी अगला गीत सुनते हैं ते अगले कॉलर दा इंतजार करते हैं, मिलते हैं गीत दे उस पार। जाना किते भी नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है जी मस्ती जंक्शन।

कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब को नहीं समझता। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो यानी कि शुरू हो गया तो हमारा अपना प्रोग्राम दिल चाहता है, तो दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच साडे कोल फरमाइशां जेड़ियां ने ओह आणियां शुरू हो गईयां ने। ते दोस्तां ने लिखिया है दिल चाहता है सत श्री अकाल नमस्कार राम राम, फिल्म जेड़ी है सफ़र। ते बिल्कुल जदों कोई नहीं समझदा तां ओही गल कहनी चाहीदी है जिहड़े सामने वाले परसन नूं ना पसंद होवे। ते फरमाइश भी कुछ इहो जिही है, गीत है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जी हाँ, तुहाडी

ईद उस पार ते जाना किते नहीं है क्योंकि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती है। फरमाइश तुसी सुनोगे फिर इस तो बाद असी बाकी दोस्तों की फरमाइश जिहड़ी है वो सुनते हैं।

बूंद बूंद से दरिया भरता है, बूंद बूंद से दरिया भरता है, आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं, जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जिहड़ी स्माइल तुहाडे चेहरे ते हले दिख रही है ना मैनू, उन्ना कोई मुस्कुरा लो, कोई गल नहीं, तुहानू वेख के भी पता किसी का दिन भी बन सकता है। फिलहाल मेरा दिन तो बन रहा है साडे दोस्तां दे मैसेजेस वेख के। तां साडे दोस्त ने मैसेज भेजा है सानू, लिखिया है कि शोर मूवी का गीत सुना दो जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ के सुनना चाहते हैं। ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश पूरी करते हैं। तो मैसेज सानू भेजे है श्री सुधाकर राजे यादव जी ने राजस्थान तो, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे विच शिरकत करन दे लई ते सानू फरमाइश भेजन दे लई। ते अगली फरमाइश है दिल चाहता है मुहब्बत जिंदाबाद। आरजे होस्ट नू नमस्कार, नमस्कार जी। गज़ल मूवी दा मुहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ दे विच रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, वाह वाह। ये फरमाइश सुनना चाहते ने सरबजीत सिंह जोशन ते सरबजीत कौर जोशन जी। ओके जोशन परिवार तो सानू फरमाइश आई है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नैक्सट साडे कोल फरमाइश है गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत। ते संगीता कवर जी ने सानू मैसेज भेजा है ते लिखिया फिल्म अमीर गरीब बोल जिहड़े ने ओ मेरी सासू ओ मेरे साले, ये गीत जिहड़ा सुनना चाहते ने। ठीक है जी, फिलहाल साडे एक दोस्त ने जिहड़ी फरमाइश लता मंगेशकर जी की आवाज़ कही वो फरमाइश असी लाने, फिर तुहाडी फरमाइश जिहड़ी असी पूरी करते हैं।

पानी तेरा रंग कैसा? पानी का रंग कहो जिहा हुंदा है? वाइट हुंदा है? नहीं, पानी का रंग हुंदा है ट्रांसपेरेंट, जिस तरीके दे नाल बंदे नूं होना चाहिदा है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिदा है उसका दिमाग बिल्कुल, ताकि बिल्कुल नॉर्मल किसी भी रंग दे विच, किसी भी चीज़ दे विच ढल जाए, किसी भी प्रॉब्लम नूं टैकल कर ले जिस तरीके दे नाल पानी कर लैंदा है। तो चलो जी प्रोग्राम दे विच अगे वधदे हां, तो देखते हां फरमाइशां कीड़ियां कीड़ियां आईयां ने। दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच, दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच अगली फरमाइश साडे कोल आई है। करणवीर हाउस तो सानू भेजी है बठिंडा तो, पंजाब तो फरमाइश आई है प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा यानी जौड़ा परिवार तो सानू फरमाइश आई है। तो लिखिया है कोई भी गीत नहीं शामिल करें, एक कोई भी गीत केड़ा हुंदा है मैनू दस्यो पहला। तो फिर आई है जी मिलन मूवी का गीत हम तुम युग युग से, ये गीत सुनना चाहते ने कमल बालूजा ते नाल सागर बालूजा ते बालूजा परिवार ने सानू ये फरमाइश भेजी है। फिर अगली मूवी जी फरमाइश आई है जी तपस्या मूवी की फरमाइश आई है, ते ट्रैक है दो पंछी दो तिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ठीक है जी, दो पंछी दो तिन के, ते पदमपुर जिला श्री गंगानगर तो राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा ते अरोड़ा परिवार तो सानू ये फरमाइश आई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो हाड़ा ये गीत असी प्ले कर रहे हैं, ते बाकी दोस्तों की वारी भी छेती आएगी, गुस्सा नहीं होना, बस सुनते हैं जी, जुड़े रहो प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच।

जी हाँ दोस्तों, मैनू लगता है ना चांद से पर्दा खींचिए जिहड़ा गीत सी ओह सी कुमार सोनू जी की आवाज़ दे विच, ते मेरे दोस्त ने तो सानू रफ़ी जी की आवाज़ दे विच किया सी, पर कोई गल नहीं, मूवी तो सेम ही सी, आओ प्यार करें। बट हाँ, गीत शायद मैनू लगता कोई गलत लग गया, माफ़ी चाहिए आपसे, हमें माफ़ कर दीजिए। चलो जी, प्रोग्राम दे विच अगे वधदे हां ते अगली फरमाइश आई है प्यार भरी नमस्कार जी, फिल्म गिरफ्तार ते किशोर आशा भोसले जी की आवाज़ दे विच गीत सुनना है जी, धूप में निकला करो धूप की रानी, ओ रूप की रानी। ठीक है, फरमाइश तुहानू भेजी है जी अशोक श्याम कुंवर जी ने, प्रमीला श्याम कुंवर जी ने। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ तो सानू फरमाइश आई है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली फरमाइश भी असी पढ़ लेंदे हाँ, दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच फरमाइश है फिल्म ईश्वर दी ते गाने दे बोल जेड़े ने वो है राम जी के धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, सुरेश वाडेकर जी ने गाना गाया है, इन्होंने सुनना है जी। सानू फरमाइश भेजी है दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा जी ने। अगली फरमाइश है कृष्णा पार्कर दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जौड़ा जी ने फरमाइश भेजी है, फिल्म है जॉनी मेरा नाम ते गायक है किशोर कुमार उषा खन्ना, गीत है पल भर के लिए कोई हमें पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, गीत की फरमाइश है। तो पहला असी पहले दोस्त ने जिहड़ी फरमाइश सानू कही सी वो सुनते हाँ, फिर उस तो बाद तुहाडे गीत की फरमाइश जिहड़ी असी पूरी करते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हो जी दिल चाहता है, मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते ट्यून इन कीता है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते, नंबर नोट डाउन कर लो जी 9855101027।

शाम टली ते मजार ते कोल एक सुकून जिया छा गया। शाम टली ते मजार ते कोल एक सुकून जिया छा गया। हवा दे हर झोंके विच किसे दी याद दा पैगाम आ गया। चिरागा दी रोशनी विच दिल ने यह गल समझी। गौर करियो, चिरागा दी रोशनी विच दिल ने यह गल समझी, जो सच्चे दिल नाल याद कीते जान वो कदे दूर नहीं जांदे। इस गजल दे विच तुसी एक शब्द सुनिया, मजार। मजार दा मतलब हुंदा है किसी बुजुर्ग, वली, फकीर या किसी मरहूम शख्स दी कब्री या फिर आरामगा, जिथे लोग अकीदत नाच जांदे ने। मजार सिर्फ मिट्टी दा एक निशान नहीं हुंदा, ये वो था हुंदी है जिथे किसी दी मोहब्बत, यादा ते कहानियां सदा लई सो जांदियां ने।

तेरियां मुस्कुराहटां ते दिल निसार कर बैठा, तेरियां मुस्कुराहटां ते दिल निसार कर बैठा, अपनी हर खुशी दा इख्तियार कर बैठा। पता भी ना लगा कदों ये हाल हो गया, कि पता भी ना लगा कदों ये हाल हो गया, मैं तेरे प्यार विच खुद नू वार कर बैठा। इश्क ओ नहीं जो सिर्फ अल्फाज विच रह जावे, इश्क ओ है जो किसे दे ना ते जिंदगी निसार कर जावे। जगजीत सिंह जी दी इस गजल दे विच तेरे निसार साकिया दे विच तुसी एक शब्द सुनिया जिसका नाम सी निसार। निसार दा मतलब हुंदा है कुर्बान कर देना, समर्पित कर देना, अपनी जान या अपना सब कुछ।

शाम मुक सकदी है पर अल्फाजा दी खुशबू नहीं, महफिल खत्म हो सकदी है पर यादां दी रोशनी नहीं। महफिल दे चिराग हुन हौली हौली बुझन लगे ने, यादां दे फुल दिलां विच सजन लगे ने। ते जे प्यार नहीं मिलता तां फिर दिल ते सट नूं लगना हुंदा है। जे प्यार नहीं मिलता दिल ते सट नूं लगना हुंदा है। जाना किते नहीं क्योंकि अगला प्रोग्राम एक प्यार का नगमा हुंदा है। तुसीं ट्यून कीता है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम इंजॉय कर रही सी एक शामे गज़ल ते इस तो बाद प्रोग्राम इंजॉय करोगे एक प्यार का नगमा है।

दिल ता दिल है, दिल ता दिल है सजना, ये जज्बात नाल भर जाता है। दिल ता दिल है सजना, ये जज्बात नाल भर जाता है। कदे हसा दिंदा है ते कदे किसी की याद विच रो पैंदा है। सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ दे विच, दकन की हसीना।

बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। इश्क शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।

गीत नहीं लम्हों का जादू है, ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल चहक उठता है। दोस्तों ये मिठे सुरां दा सफ़र इत्थे ही मुकदा है, पर याद यादां दा जिहड़ा नगमा है दिल विच हमेशा बरकरार रहिंदा है, हमेशा बरकरार रहिंदा है। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले रात दे 11 बज रहे ने ते साढ़े अज दे सभा दे सारे प्रोग्राम हुन खत्म हुंदे ने। सवेरे फिर मिलांगे 5:55 ते नवे दोस्तां ते नवे प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई मैनू महक नू दिओ इजाजत। शब्बा खैर, जय हिंद।